हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: मैं जय जान।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जन्नत रसूल की।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

असां सिर्फ एतिरो चाहियूं था ईरान वटि एटमी हथियार न हुजण घुर्जनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी नेवी सुठो कम करे रही आहे, को बि जहाज़ ईरान ताईं न पियो।

0: todo a sunaye. पाकिस्तान जो वफद गालन लाय आज ईरान विदो पाकिस्तानी अख्तियारन जो ईरान वणण सा गालन जे बेहतर नतीजे जी उम्मीद आए। अमेरिकी परदे वजीर मार्को रूबियो जो आए त ईरान सा गालन जा मुस्बत इशारा मिली रहया है। गालियो मुस्बत अंदाज में हलंदड़ आए। असा जे तादी उन गाल ते मुत्तफिक आए त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सके। डिसजे त ईरान सा मुआहिदो थे तो या न। ईरान सा मुआहिदो न थियो तो वधीक फैसले जो अख्तियार सदर ट्रंप वट आए। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की तहरान में ईरानी परदे वजीर अब्बास सिराकची से मुलाकात। खिते की सूरत हाल समेत सालसी वार मामलों से गाल। ईरानी मीडिया मौजूद मोहसिन नकवी ए अब्बास सिराकची विच में जंग के खात्मे बाद तजवीजन से गाल भी थी। मोहसिन नकवी जो हफ्ते अंदर ईरान जो ही बो दौरो है। पाक चीफ सफारती लागापन के 75 साल मुकम्मल थे ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के खिताब कन्दे चो चीन से दोस्ती पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो बुनियादी थम्ब है। तरक्की जो रस्तो पाकिस्तान ए चीन जो गडियल ख्वाब है। बिन्हीं मुल्क हमेशा एक बे के बुनियादी मुफादन जो दिफा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चो खिते में ईरान ए अमरीका तकरार के हल में पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रो है। चीन भी पाकिस्तान के सालसी वारे की कोशिश की हिमायत कई है। गडियल कोशिशों से तरक्की जा रस्ता तय कंदी। पाकिस्तान पहरों इस्लामी मुल्क है जै चीन के तस्लीम कर। चीन भी हर डुखे वक्त में पाकिस्तान से जबल जिया बीठो रो। वक्त गुजरण से गडो गड बिन्हीं मुल्क की दोस्ती मजबूत थी। सी पैक पाकिस्तान की मीशत ए रोजगार की फराहमी लाय अहम है। मुल्क में जटादार अमन के क्याम लाय दहशतगर्दी खिलाफ जंग कौमी अजम से जारी रही। वतन जो अमन अमान शहीदन ए गाजन की कुर्बानी जो नतीजो है। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तानी लाय मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल सदा आसम अली जो जीएचक्यू में शहीदन ए गाजन के एजाज देने वाली तकरीब की खिताब। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल शहीदन के वारसन ए गाजन के फौजी एजाजन से नवाजो। फील्ड मार्शल चो तो शहीद ए गाजी कौम जो फखुर है। शहीदन की इज्जत ए कुर्बानी हर पाकिस्तान लाय मुकदस अमानत है। फील्ड मार्शल पारा कानून लागू कंदड़ इदारन के दहशतगर्द खिलाफ वेड़ में लगातार कार्रवाई से वाखाण भी कई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 48 कलाक दौरान टेवी दहशतगर्द के मारे वो। सिक्योरिटी फोर्सेस दत्ता खेल स्पेन वाम ए बनू समेत मुख्तलिफ इलाक ऑपरेशन जो दायरो बधाए छो। सिक्योरिटी जरिये मूजिब कार्रवाई दौरान दहशतगर्द के कब्जे में हथियार गोला बारूद धमाकेदार मवाद ए तैयार थियल आईईडी पिण बरामद कई वो। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन दौरान जमीन का सिरंगुन ए मिनकरन जो एक पेजीदा नेटवर्क गोले उनके तबाह किया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जा समूरा गिरफ्तार मेंबर इसराइली कैद में आजाद थी वह। इसराइल का तुर्किया मुंतकिल पाकिस्तान गजा वासन लाय खाद खुराक खड़ी वीदड़। इंसानी हकन के कारकुनन इसराइल की बदसलूकी बारे वाक्य की मजम्मत कई है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के रोकना है कारकुनन से बदसलूकी आलमी कानून खिलाफ है। इटली पारा भी इसराइली कदम की मजम्मत। स्पेन के वजीर आजम चो है फ्लोटेला के कारकुन के तजहीक कबूल जोगी न है। सिंध कैबिनेट कराची के बीआरटी मनसूबे लाट 2 जो कम तेज करने की मंजूरी दी छी। कम में देर से अगुणो ठीको रद्द। एफडब्ल्यूओ के कम देने की मंजूरी डिनी वही। वे वजीचे यूनिवर्सिटी रोड जो कम 90 दिन अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। जेल में कैदन के खाधे पीते लाय वादू ग्रांट मंजूरी। कणक के बे सूबे डा मुंतकली से पाबंदी लागू। सीनियर वजीर शब्दी लीना में चुना है कणक के सूबे का बाहर मुंतकली की निगरानी कई वी। कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई कई वी। 28 आइनी तरमीम से वफाक असा को भी राबतो न क्यों। तरमीम जा नुकता शेयर थन्दा पार्टी मरकजी कमेटी फैसलो कंदी। कंदकोट वेझो भंगवार बरादरी विच में पुराने तकरार ता हथियारबंदन के हमले में एक औरत समेत 3 जणा मारजी विया। कबलो थाने के कच्छ वारे इलाके में भंगवार बरादरी के बिंदुरन में हलंदड़ पुराने तकरार ता वाक्य पेश आयो। फायरिंग में नौजवान मेमार भंगवार गुलाम फरीद भंगवार औरत का आलमी भंगवार मार्च विया
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि गुल्स इन हम बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन आफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज स्मार्टफोन्स और बड़ा शहरों आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
7: yeah!

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

आख़िर में पंहिंजा कुझु अरमान छॾे वेंदासीं, ज़िंदगी में पंहिंजा कुझु निशान छॾे वेंदासीं, बस खणी वेंदासीं हिकड़ो कफ़न तुंहिंजी दुनिया मां, बाक़ी तुंहिंजे लाइ ई सॼो जहान छॾे वेंदासीं।

जी हाँ, समय ना अज 22 मई जुमे जो भलारो डी भलारो महीनो ज़ुल्हज जो हले पियो। साईं जा ईद जूं तयारियूं त हर माण्हू करे छॾियूं आहिनि, कयो जी कंदो हूंदो, पर जेको अॼोको ॾींहुं आहे याने जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, उहो बि ईद जो ॾींहुं आहे। ऐं जुमे जो ॾींहुं अव्हां खे केतिरा बि कमकारियूं हुजनि, केतिरो बि मसरूफ़तूं छो न हुजनि, पर जुमे जे लाइ, जुमे जी निमाज़ लाइ तयारी ज़रूरी हूंदी आहे। ऐं उनखां अॻु में जो कुझु करणो आहे कमकार, त माण्हू पंहिंजो करे वठे। जेकॾहिं को ऑफिस

पीस वर्क आहे, सरकारी जॉब आहे, प्राइवेट जॉब आहे, पंहिंजे जुमे नमाज़ जे टाइम ते ज़रूर मस्जिद में ईंदो। पर जेकॾहिं को हारी नारी आहे, मज़दूर आहे, कुड़मी आहे ऐं पंहिंजे बनी वारे जा कम कार आहिनि, पंहिंजो धंधो कारोबार आहे, त उहो आज़ान खां अॻु में हुनखे बंदि करणो आहे, हुनखे छॾिणो आहे, पंहिंजे नमाज़ तयारी करणी आहे पंहिंजे ईद जी ते। ऐं ईद जे ॾींहुं हमेशह जेका वॾी ईद हूंदी आहे, पोइ बकरा ईद हुजे, ईद लोज़ा हुजे, चाहे ईद अल फितर हुजे, त उन ते बि जेकॾहिं जीअं असां नवां कपिड़ा पाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजो गुसल कंदा आहियूं, वेंदा आहियूं ऐं ख़ुशबू लॻाईंदा आहियूं, त अॼोको ॾींहुं बि भलारो बि जुमे जो ईअं हूंदो आहे त माण्हू पंहिंजो वेझी सिंझी नवां कपिड़ा पाए या धोतल साफ़ सुथरा कपिड़ा पाए करे ऐं पंहिंजे कपिड़नि ते ख़ुशबू लॻाए करे अलाह जे घर ॾे वेंदो ऐं अलाह जी इबादत कंदो। त भलारो ॾींहुं सुबुह जो सिज ऐं नियत इंसान जी उहा ई हुजे त अलाह साईं जी इबादत करणी आहे ऐं उन ई रब खे राज़ी रखणो आहे।

साईं मुंहिंजा मालिक हक़ीक़ यानी अल्लाह ताला इंसान खे ऐं जंहिंजो जवाबु आहे त बिल्कुलु हा, वाक़ई इंसान उहा शइ सोचे हासिल करे सघे थो। इंसान जे अक़ुल ऐं शऊर हिन काइनात जे इंसान लाइ घणो ई कारनामा सरंजाम ॾिना आहिनि। ही साइंसी ईजादूं इंसानी सिहत खे क़ाइमु रखण में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जूं दवाऊं ठाहे इनकलाब आंदो आहे। ऐं जॾहिं इरादा शाह लतीफ़ जे किरदार ससुईअ वांगुरु मज़बूत आहिनि त पोइ इंसान हर शइ पंहिंजे शऊर वसीले हासिल करे सघे थो। पर उहे सोच, उहो अक़ुलु ॾिनल जेको आहे अल्लाह ताला जी नेमत आहे।

अॼु असमें प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह ऐं रोशन सुबुह प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु 11 वॻे ताईं। तव्हां सां बिल्कुलु तमामु घणियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं तव्हांखे ख़ूबसूरत ऐं चूंडनि नगमा बि ॿुधाईंदासीं। पर हिन वक़्तु हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ पसींदासीं।

0: बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: इट्स 9:30 एएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: मानस होसाई
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: सामीन व नाज़रीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा औलाद के निगहबान वालिदैन है पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा
8: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

अॼु आसमिन वापसि अची चुका आहियूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ासि, मोरो, मेरापुर, सकरंड, मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं मां मुंहिंजो मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो साईं मुंहिंजा अव्हां खे यकीन इंतज़ार हूंदो अॼु जे सवाल जो, त असांजो अॼु जो सवाल जेको आहे तव्हां खां इहो आहे त तव्हां ईद जी ख़रीदारी केतिरी कई आहे। जी हा, तव्हां असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदो त ईद जा कपिड़ा ख़रीद कया आहिनि या नाहिनि कया, ऐं ईद लाइ बूट वग़ैरह तव्हां ख़रीद कया आहिनि या नाहिनि कया, ऐं ईद लोज़ा याने बकरे वारी ईद जेका आहे त हुन में तव्हां कहिड़ो पंहिंजो ढोर ख़रीद कयो आहे, ढगो ख़रीद कयो आहे या बकरो ख़रीद कयो आहे, असांखे ज़रूरु यादि कजो ऐं असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो। असांखे मोबाइल जे इनबॉक्स में तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था त असां उज़ा लाइ कहिड़ो ढोर ढगो या बकरो ख़रीद कयो आहे, या अव्हां कपिड़ा बूट या कुझु ख़रीद कयो आहे का ज़रूरु, जेकॾहिं असांजूं अदड़ियूं भेनर आहिनि त उन्हनि ज़रूरु मेकअप बि ख़रीद कया हूंदा ऐं मेहंदी बि वरिती हूंदी ईद लाइ, ऐं असांजा जेके नौजवान आहिनि त उन्हनि ज़रूरु बूट सैंडल कपिड़ा ज़रूरु वरिता हूंदा, वॉचूं ज़रूरु वरितियूं हूंदियूं, असांखे ज़रूरु ॿुधंदा। असांजे फेसबुक जे ID ते तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, मोबाइल जे इनबॉक्स में असांखे अव्हां ॿुधाए सघो था, ऐं असांखे मोबाइल नंबर ते बि तव्हां पंहिंजो हाल हवाल दिल जो ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। त साईं मुंहिंजा हिननि ॾींहनि में, ख़ासि करे ईद जे ॾींहनि में, काई बि कावड़, कोई बि जज़्बो जज़्बात तव्हांखे न ॾेखारणी, हूअं ई चवंदा आहिनि त जज़्बात हिकु अहिड़ी कैफ़त जंहिं सां नुक़सान मिले थो, ऐं साईं मुंहिंजा जज़्बात हिकु अहिड़ी कैफ़त आहे जंहिं मां सिर्फ़ नुक़सान हासिल थी सघंदो आहे, छो त जंहिं वक़्त बि जज़्बात इंसान मथां हावी थींदा आहिनि तंहिं वक़्तु इंसान उभरो थी वेंदो आहे, ऐं उभरई में अहिड़ा फैसला थींदा आहिनि जंहिंजा नतीजा ख़राब निकरंदा आहिनि, ऐं दुनिया जा सभु ॾह ऐं अकाबर हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि। अहिड़ा फैसला थींदा आहिनि जंहिंजा नतीजा ख़राब निकरंदा आहिनि ऐं दुनिया जा

नथिजे पर जज़्बात खे पंहिंजे ई हुकुम हेठि रखिजे जंहिं मां फ़ाइदो ई फ़ाइदो मिलंदो ऐं नुक़सान को बि न थींदो। अहिड़े हिसाब सां ई अहमद मुग़ल छा थो चवे गॾिजी ॿुधूं पिया।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में तव्हां खां इहो असांजो इहो सवाल आहे, तव्हां ईद जी ख़रीदारी कहिड़ी कई आहे ऐं केतिरी कई आहे? तव्हां असां सां पंहिंजे दिलि जो अहिवाल ज़रूरु वंडींदो ऐं प्यार मां मोहबत मां तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे इनबॉक्स में। मोबाइल जे इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। मोबाइल जे राइट ऑप्शन वेंदो, उते एल आर के लिखी करे स्पेस ॾींदो, यानी थोरी विथी ॾींदो, उते पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं असांखे तव्हां दिलि जो अहिवाल ज़रूरु ॾींदो त ईद जी कहिड़ी ख़रीदारी कई आहे ऐं केतिरी ख़रीदारी कई आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजे फेसबुक ते असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया त असांखे फेसबुक जे लाइव पेज ते तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था। आसान तरीक़ो आहे तव्हांखे फेसबुक ते मैसेज करण जो, ऐं तव्हां कॉल करे बि असांखे पंहिंजो दिलि जो अहिवाल ॿुधाए सघो था। त असांजो नंबर आहे 0333221888। ऐं समय जा वरी ॻाल्हि कंदासीं त दोस्ती ऐं एहसान मंदी कॾहिं बि विसारण न घुर्जे। एहसान वारे जो हर हमेशह ख़ैरु घुरणु घुर्जे ऐं एहसान चुकाइण जो हक़ अदा करणो आहे। को इंसान असांखे रस्तो ॾिए थो त जो एहसान मञण में को बि ख़र्च हर्ज न आहे। हिकिड़ो नंढो किसो अव्हां जे समातन ताईं। जंग में हिकु जेको आहे सो माण्हू आयो ऐं हुन खे कंहिं पंहिंजो भला खां, कंहिं नांग खां, कंहिं विषय खां बचाए थो त उहो बि हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो असांजे मथां अहसान आहे। जेकॾहिं कंहिंखे थधी शाम जो इंसान विहारे थो उहो बि हुनजो अहसान आहे। त जेतिरो थी सघे कंहिं दोस्त सां अहसान कंदा रहो ऐं चवंदा आहिनि त अहसान करणु थोरो करे तव्हां कंहिं बि खूह में फिटी कयो, छो त उहो तव्हांजो अहसान कॾहिं बि तव्हांखे कमु अची सघे थो। छो त जेको इंसान आहे चवंदा आहिनि त थधो घड़ो पाण खे शाम में रखाईंदो आहे, त जेको इंसान सुठो हूंदो आहे उहो पंहिंजो पाण खे भलो, इंसान जा उहे कम उन खे भलो सॾाईंदा आहिनि ऐं ॿिए हंधि उहा तारीफ़ थींदी आहे ऐं उन खे माण्हू चङो चवंदा आहिनि त यार माण्हू ॾाढो भलो आहे, माण्हू ॾाढो चङो आहे ऐं हुन जा कम ॾाढा भला आहिनि। त इहा आहे असुल

0: हर आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FF6
1: स्पीड रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अमेरिका ईरान विच में जंग के खात्मे लाए पाकिस्तान एक भेरो बीहर कोशिशों तेज कर छ्यूं। अरब मीडिया मूजिब मुसवदे के हतमी शकल दियण लाए पाकिस्तान की अहम शख्सियत सुभाणे तेहरान पहुंची ईरानी क्यादत से मुलाकात कंदी। ईद उल अज़हा बाद इस्लामाबाद में गालियन के बेदौर दौरान जंगबंदी माहिदे ते सहीं थियण जो इम्कान है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत के सुभाणे वाले दौरे बाद ईरान ए अमरीकी माहिदे तो क्यादत से मोहसिन नकवी जी ईरानी सदर मसूद पिस्तकियान इंकलाब जनरल अहमद बकंदर मोमनी से धारदार मुलाकात।

0: पारां बि पंहिंजे वज़ीराज़म चयो आहे त फ्लोटिला जे कारकुन जे तज़ही क़बूलण जोगी न आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
5: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
1: GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज़।

जो तव्हां खां सवाल इहो आहे त मां तव्हां ईद जी ख़रीद ऐं तव्हां असांखे 4331322888 ते बि तव्हां असांखे कॉल करे पंहिंजो नालो लिखाए सघो था या वन व्हीलिंग करण या रोड ते हिक ॿिए खां गोहे खटण जे चकर में न पइजे ऐं अव्हां जे सवारी में वेठल मुसाफ़िर अव्हां खां कॾहिं बि न विसरण घुर्जनि जंहिंजा ज़हन उन वक़्तु बेसकून थी वेंदा आहिनि ऐं जंहिं वक़्तु अव्हां स्पीड खे वधायो था तेज़ रफ़्तारीअ जो अंजाम सदाई आहे उन रखिजे ऐं ज़रूरी हुजे घणियूं देर पहुचो पर सही ऐं सलामत पहुचो ऐं अव्हां जे हथनि में केतिरनि ई इंसाननि जूं जानियूं हूंदियूं आहिनि जेके अव्हां जी ज़िमे हूंदियूं आहिनि ऐं जेके वरी केतिरनि ई फर्दनि जा सहारा बि हूंदा आहिनि उन करे तेज़ रफ़्तारी मुज़ाहिरो न कयो ऐं कंहिंजा सहारा खसण जी कोशिश न कयो छो जो तव्हां सुहिणा सेबता आहियो तव्हां सुहिणा आहियो तव्हां गुलाब जा गुल आहियो ईअं न कयो तेज़ रफ़्तारी न कयो ऐं जेको आहे वन व्हीलिंग न कयो।

अजिया समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां सुनन जा नाला अवां गुलाब जा गुल आयो अवां प्रोग्राम जा सिंगार आयो तवां जा नाला खणंदासीं हिन तव्हां जेके बकरा ख़रीद कया आहिनि ऐं तव्हां जेके ढोर ढगा ख़रीद कया आहिनि साईअ लाइ ऐं तव्हां बूट कपिड़ा ख़रीद कया आहिनि ऐं जिन न कया आहिनि त मुंहिंजो अवां सभिनी खे हिकड़ी गुज़ारिश आहे अव्हां खे त पंहिंजी ख़रीदारी खां अॻु में पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो। उन ग़रीबनि जो, उन मिसकिननि जो, उन यतीमनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो जिन कपिड़ा न वरिता आहिनि, जिन बूट न वरिता आहिनि। ऐं उन ॾींहुं यानि ईद वारे ॾींहुं, ओज़ा वारे ॾींहुं उन सभिनी मिसकिननि जो ख़्यालु ज़रूरु रखिजो ऐं पाड़े वारनि खे, पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे मिटनि माइटनि खे न विसारिजो उन गोश्त खां, उन पतीअ खां, उन हिसे खां जेको हुन जो हिसो ठहे थो। ऐं सभिनी, बसि मां वधीक तव्हांखे नथो चवां ऐं तव्हांजा नाला खणा थो। असांजा दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां, अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, सुमार सोलंगी ऐं अरबाब कुंभार ऐं डॉक्टर

0: जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी उसारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक यारहें वॻे ताईं ऐं असां तव्हांजे इंतज़ार में आहियूं इनबॉक्स में पंहिंजा नाला मोकिलियो फेसबुक ते पंहिंजा नाला असांखे सेंड कयो ऐं असांजे तव्हां मोबाइल कॉल ते बि पंहिंजो नाला लिखाए सघो था नंबर आहे 0333221322888 तव्हांजो असांखे इंतज़ारु रहंदो हिन वक़्तु असां हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
2: वादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: इट्स 10:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें
7: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
8: ये

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: मैंने उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हा जी असमिन कुझु दोस्तनि जा वरी नाला ऐं अव्हां जी उमेदूं ऐं अव्हां खे इंतज़ारु हूंदो आहे त असांजे नाला प्रोग्राम में शामिल थियनि, छो त हीउ असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो पूरे नेटवर्क जो आहे, GFM 88 जो नेटवर्क तमामु वॾो, पूरी सिंध जो नेटवर्क आहे। ऐं दोस्त कुझु रहियल आहिनि जंहिंजा नाला खणंदा हलंदासीं। मोहम्मद इक़बाल लाशारी जलोरी अमीरपुर ख़ास खां, आसिफ अली चाचड़ वासिफ बुकटी माहौटन खां, ऐं यासमीन मलक मीरपुर ख़ास खां, फ़क़ीर महरम जतोई थरड़ी आगा खान जतोई खां, ऐं चनेसर भेण आज़ाद बि कटबर ज़िनलाब्दीन ऐं मसह बि कटबर रहमतपुर महले लाड़काणे खां, ऐं असांजे भाउ वकार जतोई, यूनिस जतोई ऐं प्रदीप राजा पीरशेर खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी, ॻोठ मोले ॾिणे माशी लॻे वॾनि महरनि खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख्तियार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी लॻे झूणनि खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइन खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद जतोई, नसरला जतोई, ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अहसन फहद अहद शादाब चांडियो, ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाफ सखर लॻे सब्जी मंडी खां, एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फौजी इरशाद।

0: हाजी असां प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजा दोस्त शामिल थियण लाइ फोन कई मंज़ूर जलबाणी मोहसिन अहसन जलबाणी ऐं नंढड़ी पोपरी ॻोठ गाज़ी ख़ान जलबाणी तालके वारा या तालको नसीराबाद वञो ॻोठु हूंदो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं समुझा अव्हां खे ॿुधाईंदा हलूं त पूरे मुल्क में पूरे सिंध में असांजे नंढनि वॾनि शहरनि में ॻोठनि में हिन वक़्तु जेको पोलियो मुहिम हले पई उन जो असांखे ज़रूरु साथ ॾियणो आहे जेका बि पोलियो टीम असां वटि अचे पई असांजे ॻोठनि में अचे पई असांजे दर दर ते अचे पई असांजे घर ॾे अचे पई नंढड़नि ॿारनि खे पोलियो जे मूज़ी मर्ज़ खां बचाइण लाइ जेके पोलियो जा फुड़ा पीआरिया वञनि पिया उन्हनि जो तव्हांखे असांखे साथ ॾियणो आहे छो त पूरी दुनिया मां पोलियो जो मर्ज़ जेको आहे ख़तम थी चुको आहे पर किथे किथे असांजे मुल्क प्यारे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान में किथे किथे अञा इहे मर्ज़ थोरो ज़ाहिरु थी पए पियो उन लाइ इलाज आहे इलाज सुनत आहे इलाज कराइणो आहे ऐं असांखे उन टीम जो असांखे साथ ज़रूरु ॾियणो आहे ऐं पंहिंजे उन्हनि पंजनि सालनि जे अंदरि जेके असांजा नंढा ॿार आहिनि असांजा प्यारा आहिनि असांजा गुलाब जा गुल आहिनि उनखे असांखे पोलियो जा फुड़ा ज़रूरु पीआरिणा आहिनि उनजो साथ ज़रूरु आहे
1: मूसा कोन निभाई हो मूसा कोन निभाई मुझा संदर

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Cadet College.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

मूंखे चुभनि था अंदर में, मंगर मूंखे प्यारा लॻनि था अंदर में। प्रोग्राम म्यूज़िक मथे साण करे मां तव्हांजो ख़ासि वेठा आहियो ऐं वॾी ईद आहे ऐं तमामु ख़ुशियुनि वारी ईद आहे।

जी मुझे मिठा तीन कुर्बानी की ईद है और तमाम वही ईद है खुशियन वाली ईद है। अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी करण की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी वाली ईद जो खुशियों नसीब फरमाए। तो मुझा साई तुम असाने प्रोग्राम में शामिल थी सोता।

लाड़काने खां वहीद अली उमरानी पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम अदा वहीद, कहिड़ा हाल अथई अबा? ठीकु आहे, तबियत सही अथई। चए थो उन सां गॾु आहे निसार हाकिम अली ऐं निंडड़ो सईद अली ऐं ग़ुलाम रसूल उमराणी ऐं मुनवर मोलाए जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि। हाज़िर प्यारा मुनवर मोलाए बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। निंडड़े खे मुंहिंजी तरफ़ खां खोड़ सारो प्यार ॾिजो ऐं बकाया जेके तव्हांजा दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि मुंहिंजी तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम छॾिजो। महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। अच्छा, प्लेलिस्ट में हिकिड़ो सॉन्ग आहे अहमद मुगल जी आवाज़ में, ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, मुंहिंजी पसंदि जो आहे। अचो त हुनखे गॾिजी इंजॉय करे था वठूं।

0: शाह लतीफ का।
1: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa tayar kayal Jekade Kudrati Nikhar Saaf Naram Ay Roshan Chehro Heme Diamond Glow Bleach Cream
5: This program is brought to you by
6: Bankal Habib Rishta Bharose Ka।
7: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
2: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट में सिधे ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां हां 8881 ते। त दोस्तनि जा कुझु मैसेज हिन वक़्तु मुंहिंजे पैनल ते मौजूदु आहिनि, त उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। असांजो प्यारो भाउ आहे दादू मोरो पुल खां हुसैन मल्ला ऐं मज़हर अली मल्ला, ऐं चवनि था प्रोग्राम तमामु सुठो आहे अदा गुलाब खान, ऐं कैसे हो अदा, मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां। अदा जन अस्सलाम वालेकुम बि चयो आहे, आली मदद वालेकुम अस्सलाम, मौला आली मदद भाउ मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो, ठीकु आहियो, तबियत सही आहे तव्हांजी। अदा सां गॾु आहे मज़हर अली मल्ला, ऐं अदा जन चवनि था त असांखे शाहिद अली बबर जे आवाज़ में कलाम ॿुधायो, सुख सारा हली आहे त लिखी ॾेई। अड़े अबा, केरु थो पंहिंजा सुख लिखी ॾे, सुख बचा किथे आहिनि ज़िंदगीअ में हिन वक़्तु माण्हुनि वटि, उहे बि तव्हां ईअं लिखी ॾेई छॾियो। हाणे तव्हांजी फराक दिली तमामु वॾी आहे, ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, अलाह ताला तव्हांजे सुखनि में तमामु घणो इज़ाफ़ो करे, ऐं असांजे अख़्तियार में कॾहिं बि कोन हूंदो अथव पंहिंजा सुख कंहिंखे ॾियूं, पंहिंजी ख़ुशियूं कंहिंखे ॾेई छॾियूं। या असां अक्सर करे अदा ईअं चवंदा आहियूं न अदा हुसैन, त अलाह तोखे मुंहिंजी हयातीअ जा ॾींहं बि ॾिए। छा तव्हांखे लॻे थो त ईअं हूंदो आहे? ईअं न आहे हूंदो, जेका हयाती इंसान जी लिखियल हूंदी आहे न ओतिरी ई मिलंदी आहे, इन खां न मिली सेकंड, सेकंड बि अञा वॾो आहे, मिली सेकंड वधी सघे थी न घटि थी सघे थी। अगरि मां चाहियां हा, जेकर ईअं हुजे हा, त मां पंहिंजी ज़िंदगी, मां पंहिंजी ज़ाती तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, अगरि मां ईअं चाहियां ऐं ईअं पॉसिबल हुजे हा, त मां पंहिंजी ज़िंदगीअ जो अधु हिसो, मतिलबु जवानीअ जो, पंहिंजे वालिद खे ॾियां। मुंहिंजो बाबा अॼु ज़िंदा हुजे हा, मूं सां गॾु हुजे हा, ऐं मुंहिंजी जेका ही कामयाबी आहे उहा हू पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसे हा, त मां पंहिंजी ज़िंदगी जो अधु हिसो हिनखे ॾेई छॾियां। त इहे ॻाल्हियूं हुजनि, बरहाल शाहिद अली बबर जो ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, मां बि इलाही दफ़ा हिनखे ॿुधो आहे ऐं वणंदो पियो आहे। पर शाहिद अली बबर जो हिकिड़ो ॿियो प्लेलिस्ट बि मुंहिंजो सॉन्ग आहे, उहो तव्हांखे अॼु मां ॿुधाईंदुसि, ऐं इहो मां काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में हलायो बि आहे। कमरदीन चांडियो खां शम्सुद्दीन सोलंगी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। अदा शम्सुद्दीन, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो, चयो था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पहली बार शामिल हो रहा हूं। अदा पहिरियों दफ़ो तव्हां शामिल थिया आहियो त तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो, ख़ुशामदीद चवां थो, ऐं वेलकम चवां थो। महिरबानी प्यारा, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। रऊफ़ मक़सी जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, रऊफ़ मक़सी जो कलाम बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। त अहिड़े ई तरीक़े सां असांजे प्रोग्राम ई तव्हां शामिल थी सघो था, बज़रिया आहे SMS। SMS करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजी मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, MRO लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो 8881 ते। ही गानो गुलाब जो गुल तूं आहीं, मिठा मुंहिंजी दिल तूं आहीं, रऊफ़ मक़सी जो ख़ूबसूरत आवाज़, ज़बरदस्त बोल ऐं ज़बरदस्त शायरी, स्पेशली मां डेडिकेट कयां थो पंहिंजे समूरनि लिसनर्स खे। मुंहिंजी तरफ़ खां ही तव्हांजे लाइ तोहफ़ो आहे।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

ऐं उन्हनि खे मुंहिंजो चयल हूंदो आहे बाबा महिरबानी कयो ओरिजिनल मछी ऐं साबी वॾी ॿ अढाई किलो जेतिरी हुजे न उहा मूंखे ज़रूरु ॾींदा की वॾे शौक़ सां खाईंदो आहियां। इनशाला अदा हयाती रही त ज़रूरु ईंदासीं। दादू मोरो पुल ऐं मुंहिंजी ऑफिस FM 88 तमामु घणो को परे न आहे, 4-5 किलोमीटर जो ई पंधु आहे। दादू रोड ते ई आहे ऐं बल्कि दादू बाईपास ते ई असांजी ऑफिस आहे। ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उहे अगरि असांजी FM रेडियो ते अचणु चाहिनि था, मिलणु चाहिनि था, विज़िट करणु चाहिनि था, त मोस्ट वेलकम। असांखे तमामु घणी दिली ख़ुशी थींदी। ऐं अदा मोहम्मद हुसैन, तव्हांजी दावत मूंखे क़बूलु आहे। इनशाला ताला हयाती रही त मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। बाक़ी दादू मोरो पुल तां असांजो हर 5-8 ॾींहं क्रास थींदो रहंदो आहे। पुराणी कार में आयासीं, वियासीं हलिया, ऐं न को मां तव्हांखे सुञाणियां थो, न मूं वटि तव्हांजो नंबर आहे, न मां तव्हां मूंखे सुञाणियो था। थी सघे थो पाड़ेसरी आहियूं, हिकु ॿिए खे ॾिठो बि हुजे, पर सुञाणियूं त कोन था। दादा गुलाब कहिड़ो आहे, दादा हुसैन कहिड़ो आहे। महिरबानी दादा, तव्हांजे खुलूस जूं खोड़ सारी मोहबतूं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। मीरपुर ख़ासि खां फरीद महर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सलाम त वालेकुम सलाम। ऐं अदा जन अदाजन सां आहे, अब्दुल्ला महर खे सलाम चवनि पिया। अदा अब्दुल्ला, तव्हां अगरि हिन वक़्तु असांजो FM नेटवर्क ॿुधी रहिया आहियो मीरपुर ख़ासि खां, त तव्हांखे फरीद महर जे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम मिलिया आहिनि। महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। मुंहिंजे तरफ़ खां खोड़ दफ़ा तव्हांखे भली कार। इरशाद अली लकारी ॿुधे पियो मीरपुर ख़ासि खां, बेलारो शाख आहे जिथां खां अदाजन ॿुधनि पिया। ऐं सराइकी सॉन्ग जी अदाजन फरमाइश कई आहे। हाज़ुर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। दिलि जाए रखे छॾियो। मेमण माला मोरा खां, मोरो खां साथ राहिब ऐं माशूक मेमण मोराई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया। उन्हनि सां गॾु आहे मुमताज़ मेमण ऐं काशिफ़ हुसैन मेमण हक़ मौजूदु, त सदा मौजूदु। मुंहिंजा साईं महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में सदाई मुंहिंजे प्रोग्राम में ईंदा आहियो ऐं शामिल थींदा आहियो, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। ॻोठ हाजी ग़ुलाम ख़ासि केली लॻ झंडो मोरीअ खां, क़ुर्बान अली ख़ासि केली। अच्छा हा, अदा क़ुर्बान, महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो। स्पेशली तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं दादू मोरो पुला हुसैन ऐं अदा सां गॾु आहे मज़हर अली मलाह ऐं अदा मोहम्मद हुसैन। महिरबानी प्यारा, उहा ई साॻी ॻाल्हि अदा जन लिखी आहे, मच्छी खाराइण वारी ॾिसूं था मच्छी कॾहिं था अदा हुसैन जी असां खाऊं। त अदा महिरबानी आहे, भाउ हुसैन तव्हांजो इहो ख़ुलूस आहे, प्यारु आहे, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। जेके बि असांजा लिसनर्स जेके हिन वक़्तु असांखे खामोशीअ सां ॿुधी रहिया आहिनि, उनखे चवंदासीं बाबा पंहिंजो मोबाइल फोन खणो, उन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते। अच्छा, सॉन्ग प्ले करणो हुयो शाहिद बबर जो, ऐं प्ले थियो आहे शमन अली मीरारीअ जो। अचो त इंजॉय कयूं था।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 12 PM। दिस ट्रांजैक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN
5: न्यूज। गोशादा जमाली वासी अब्दुल लतीफ जमाली जो घर में तशद थे लाश मिलो, पुलिस मौजूद नौजवान के तशद करे घुटा नहीं कदल कह।

अमेरिका ईरान विच में जारी छिकत लाइ कोशिशूं तेज करे छॾियूं। घर वज़ीर मोहसिन नकवी जी 24 कलाकनि दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकीअ सां तहरान में ॿी मुलाक़ात। तहरान ऐं वॉशिंगटन में इम्कानी वाइदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियनि मूजिबि पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी साज़िश में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तसदीक करे छॾी। अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वॉशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआदे जे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बर इदारे मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी।

ने खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। ईरानी ख़बर इदारे मूजिबि तहरान ऐं वाशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं माहिदे खे हथ में। कराची में शाहराह भुटो जी तामीर मुकमल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिला माहिदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। भुटो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो, जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल। कराची सिंध सां 10 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपयनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो।

0: है, सुनते रहो GAFM
1: 91.6। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: कि मैं ग्रीन हूं।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

आवाज में यो सॉन्ग आहे त इहो तव्हां फरमाइश कई आहे मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे असां इहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ऐं महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। सिटी शहजादपुर खां मीर अलह रितो ख़ान टालपुर पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो चए थो, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको त वालेकुम सलाम भाउ मुंहिंजा, महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया, तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो, हुन जे लाइ तमामु घणी महिरबानी, तमामु घणो प्यार ऐं ख़लूस मुंहिंजी तरफ़ खां। ॻोठ मोहम्मद उस्मान बिरोही दवा लिखियल शायदि ईअं ई आहे, दवा स्टॉप से अली अकबर बिरोही पंहिंजो प्रोग्राम ते पियो चवे थो, सलाम आरजे गुलाब खान, वालेकुम सलाम भाउ मुंहिंजा, अदाजन चवनि था कैसे हो, तबियत कैसी है, प्रोग्राम ज़बरदस्त है, सब सुनने वालों को सलाम और जुमा मुबारक। जी हाँ बिल्कुल अदा, वालेकुम सलाम, जुमे जो बाबरकत दिहाड़ो आए, जेके भी मुझे लिसनर्स इन वक्त बुधन पे उन अदा अकबर बिरोही की तरफ का सलाम आए, जुमे जी मुबारक अदाजन चई है, अदाजन चवन था तो मेरे भाई को डेडिकेट करना सॉन्ग, अदा जो नालो अथस मोहरम अली बिरोही, मोहम्मद हनीफ बिरोही, चवन था को बिरोही की असा के सॉन्ग बुधाया, हाजिर मुझा प्यारा, तव्हांजो ॿियो मैसेज आयो आहे, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। ॻोठा जी गुलाम ख़ासि केली लग झंडो मोरी खां कुर्बान अली ख़ासि केली अदा, कुर्बान महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया, लख गुरब लख अहसान।

सलाम भाई साहब, कैसे हो? प्रोग्राम नाइस है। शाजिया शेख प्रोग्राम पीर जो गुड़खा पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पई त वालेकुम सलाम अदी। महिरबानी तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो पिया। ऐं अदी चवे थी भाई सिस्टर सुमेरा क्यू नहीं आती है, शो मी सॉन्ग प्ले करो मास्टर मंज़ूर का। त भाजी सुमेरा त पंहिंजे ज़ाती मसरूफ़िया सबबु कुझु वक़्त खां वठी FM 88 सां जुड़ियल नाहे, पर इनशाला ज़रूर अची वेंदी। ऐं भाजी सुमेरा बेस्ट आरजे आहे, ऐं न सिर्फ़ तव्हांजी बल्कि असांजे समूरनि लिसनर्स जी तमामु बहितरीन आरजे आहे। हुनजा खोड़ सारा फैन्स आहिनि। महिरबानी अदी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। शमसुद्दीन गोपांग कंबर खां पंहिंजे प्रोग्राम ते चयो अथव, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, महिरबानी मिठा तव्हां असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो पई। वालेकुम असलाम, मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे भलीकार। मुशरफ़ 78 मोरीअ खां राजा हमीर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। किश्वर कुमार उन सां गॾु टेलर मास्टर अदा वरी बि ईद अची वई। लाल पवन कुमार ऐं अदा जन सां गॾु आहे नवाब लुंड। ऐं चवनि था भाई सलाम क़बूल कजो ऐं मसरूफ़ ऐं जुमे के दिन है। जी हा बिल्कुल अदा, जुमे जो ॾींहुं आहे, निमाज़ जी तयारी करणी हूंदी आहे, खोड़ सारियूं एक्टिविटियूं हूंदियूं आहिनि जेके जुमे जे ॾींहुं माण्हू कंदो आहे। महिरबानी मिठा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। बांदीअ खां आफ़ताब जमाली पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, अदा आफ़ताब तव्हांखे भलीकार चवां थो। बांदीअ खां पहिरियों मैसेज मुंहिंजे शो में आयो आहे, ऐं बांदी मोरो एतिरो परे न आहे, पर बांदीअ खां पहिरियों मैसेज आयो आहे, हुन जे लाइ तव्हांखे मां स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। ऐं अदा जन चवनि था त असांखे सॉन्ग ॿुधायो मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में। हाज़िर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे मुमताज़ लाशारी जे आवाज़ में ज़रूर सॉन्ग ॿुधाईंदासीं।

कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मुंह सां वंडींदे। कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मुंह सां वंडींदे। हरदम पियो थो राह निहारियां, हरदम पियो थो राह निहारियां, अण तणमी थो फेरियूं पायां। कॾहिं अची तूं आथत ॾींदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे। तोखे ॾिसण लाइ साह सिके

तोखे डिसण जे लाइ सास खे पियो, तोखे डिसण सां रूह ठरे थो। अखड़ियूं मिलाए हिकु थी वींदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वॾींदे। फैज़ाले जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हां जूं सुंदर समातूं।

0: तवजा वेठा सही सिंध जो नौजवान नसल की न इखलाकी तरबियत आखिर केर कंदो कंहिं बि क़ौम जो मुस्तक़बिल हुन जे नौजवान नसल सां जुड़ियल हूंदो आहे। जेकॾहिं नौजवान जी न तरबियत सुठे नमूने थिए त उहे समाज तरक़ी अमुन ऐं शौर तरफ़ वधे थो, पर जेकॾहिं नौजवान इख़लाक़ी क़दरुनि खां परे थियनि त समाज में बे रावरी तशद्दुद बदउनवानी ऐं बेचैनी वधी वञे थी। अॼु जेका सिंध समेत सॼे मुल्क में उहो सवाल अहम बणिजी वियो अथव त आख़िर नौजवान नसल जी इख़लाक़ी तरबियत केरु कंदो। इख़लाक़ी तरबियत जी शुरूआति घर खां ई थींदी अथव। वालदेन पंहिंजे ॿार जी पहिरीं दर्सगाह हूंदा आहिनि। ॿार पंहिंजो जेको बि घर जो माहौल ॾिसंदो आहे न उहो ई संदसि शख़्सियत जो हिसो बणजंदो आहे। जेकॾहिं वालदेन पाण सचाई, एहतराम, सब्र, ईमानदारी अख़्तियार कनि त ॿार बि उहे ई ख़ूबियूं सिखंदो। पर जेकॾहिं घरनि में झेड़ा, कूड़ ऐं बेध्यानी वधी वञनि त ॿार जी शख़्सियत बि मुतासिर थिए थी ऐं वरी उन खां पोइ अचे थो किरदारु स्कूल ऐं उस्ताद जो, जेकी नौजवाननि जी तरबियत में अहम किरदारु अदा कनि था। तालीम रुगो किताबनि ते महदूद न हुजणु घुर्जे, पर शागिर्दनि खे इख़लाक़ी बर्दाश्त, इंसानी रवैया ऐं ज़िमेवारीअ जो दर्स मिलणु घुर्जे। पर बदकिस्मती त असां अॼुकल्ह तालीम जो मक़सदु सिर्फ़ नौकरी हासिल करणु ताईं महदूद बणिजी चुका आहियूं, जॾहिं त किरदार साज़ीअ खे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ करे छॾियो आहे। समाज में जेकी ही असांजा मीडिया जा इदारा आहिनि उन्हनि जो बि तमामु घणो असर अथव। सोशल मीडिया नौजवान जी सोच बदिलाए रही आहे। जेकॾहिं मीडिया मुस्बत पैगाम, अमली प्रोग्राम ऐं सुठा मिसाल पेश करे न त नौजवान जी रहनुमाई थी सघे थी, पर फहाशी, नफ़रत ऐं बेमक़सद मवाद नौजवान खे ग़लति राह ते वठी वञे थो। तंहिं करे मीडिया ते बि ज़िमेवारी आहे थिए थी त उहा तामीराती किरदारु अदा करे। उन खां अलावा मज़हबी आलम, अदीब, समाजी अॻवाण, उन्हनि जो बि फर्ज़ आहे त हू नौजवान में इख़लाक़ी शौर पैदा कनि। इस्लाम इंसानियत, एहतराम, सब्र ऐं सचाई जो दर्स ॾिए थो, पर जेकॾहिं नौजवाननि खे दीन जी सही तालीम मिले त हू केतिरनि ई बुराइनि खां बची सघनि था। असांखे रुगो नौजवान पढ़ियल लिखियल न पर बाइख़लाक, बाशऊर ऐं ज़िमेवार इंसान घुर्जे, छो त मज़बूत क़ौमुनि जी सुञाणप उन्हनि जे किरदार सां ई थींदी आहे, बल्कि डिग्रियुनि सां न। मुंहिंजे मिठा ताईं वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्यारा प्यारा तव्हांजे पसंदि जा ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत ट्रैक्स।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bankal Habib, rishta bharose ka.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Main Sayyid Ziauddin Shah, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

ज़ुल्फ़िकार मंगी मोहब्बत का सवाह इन दुनिया में बियो रखियो छा बिल्कुल इन ही आए उन के अलावा रुसण के हवाले से ताकि मैं बुधा इंसानी रिश्ता जी है मोहब्बत एतमाद बर्दाश्त से कायम हुआ जिते प्यार हों उत कदें कदें नाराजगी भी पैदा थी पवन पर जैसे रुसण रोल्स जो मामूल न बनजी वे तो रिश्तन की खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता खत्म थे लगनी है रोज रोज रुसण न रुगो दिल में फासला पैदा करे तो पर इंसान की जहनी सुकून के भी न तबाह करे छे तो कई मू नंढन नंढिन गालिन ते नाराज थी वन था कदें देर सा जवाब दियन था कदें कें गाल के नजरअंदाज कर मामूली इख्तिलाफ भी रुसण जो सबब बणजी वा अव शुरू में वो अमल शायद मोहब्बत की अलामत लगे पर जडें आदत बणजी वे तो सामू वो मू थक पवे तो हर वक्त कें परछाइण मनाइण से आसान कम ना हों बहरहाल महबूब तो मालिक है उन्हें हिसाब छाजो जिंदगी अगे मसलन से भरल होंगी है जैसे एक रिश्तों जिद शिकायत ने नाराजगी में फांसी वे तो खुशियों खत्म थी वन थी रोज रोज रुसण जो एक नुकसान उहो भी है मू आहिस्ता आहिस्ता अहमियत विञाइण लगन है शुरू में मू परछाइण के लिए हर कोशिश कन् पर जडे नाराजगी वन थी तो दिल बेजार थी पवे थी उन कर मोहब्बत के जिद ही अनाजे बाहमी साहड़े छड़े थी सॉन्ग आए ढो जबरदस्त अच्छा एंजॉय किया

जो सुनो नवाब अन जो नवाब आए ये बोल हन गाने जा बाबा त प्रोग्राम जो वक्त पहुंची है पाजी पुजाणी ते वणण का मेरे हमेशा अंग ताके चनासी पाजो घणे खा घणो ख्याल रखना कयो पाजे दोस्तन जो पाजे मिटर मेटर जो पाजे पाड़े वारन जो तमाम घणो ख्याल रखना कयो छो जो जिंदगी मुक्तसर है खबर ना है जिंदगी केतरी है। शमन अली मिराली जो विंदे विंदे सॉन्ग प्ले कया तो डाठो भलो सॉन्ग अथव उम्मीद तवा सभी के पसंद इंदो इंशाल्लाह ताला मुझे तरफ का एडवांस ईद जो मुबारकू अवां के हुजन छो जो असो जो वरी प्रोग्राम नेक्स्ट थन्द वो ईद का बाद में थन्द त ईद के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह तवासा गड हुंदासे असो नेटवर्क की हमेशा कोशिश रही है त ईद जो खुशियों दुबाला थियन तवाजो ही असो साथ रहे इंतजार कजो ईद के प्रोग्राम में पा गड हुंदासी नेक्स्ट फ्राइडे से अगर हयाती रही तो वरी सागे ही टाइम से तवासा गड हुंदासी तेस तई जे लाइ दींदा पांजे मेज़बान गुलाब खान भेण के इजाजत त अलह वाही अलह निगहबान शमन अली मीराले जो खूबसूरत सॉन्ग सजन लख कुर्ब करे आए तू फिरी पेर में।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 1 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: तो पुलिस मुझे वाके में मुलविस उम्मीद अली रांझण अनिकुल जमाली की गिरफ्तार किया है।

पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में जारी छिकतान के खात्मे के लिए कोशिशों तेज कर छड़ियों। घर वजीर मोहसिन नकवी की 24 कलाक दौरान ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी से तेहरान में भी मुलाकात। तेहरान ए वॉशिंगटन में इम्कानी वायदे वाले तजवीजों से गालू। ईरानी न्यूज एजेंसी फारस मूजिब बिन्हीं अगवान अमेरिकी ईरानी तजवीजों से तफसीली गालबोल कई है। जरिए मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वनी सके तो। ईरान पाकिस्तान की सालसियत में अमेरिका से गालू जारी रहने की तस्दीक कर छी। अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। मुआदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबर इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गालू जारी हैं। बई धुरियों मुआदे के हतमी शिकिल देने के लिए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचाए रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तक वायदो तय ना थो। इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है। आबन हरमूज से ईरान टोल लगाया तो तेहरान ए वॉशिंगटन में सफारती मुआदो न थो। दुनिया में केर भी आबन हरमूज से टोल के हक में ना है। इनके कबूले न तो सके। अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रोबियो है तो तेहरान से गाल में कुछ मस्बत इशारा मिलिया। पुरउमीद ना इंदड़ कुछ डी में शयू वाजे थी वेंदियों।

अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबत सदर ट्रंप जा अख्तियार महदूद करण वाले ठहराव से वोटिंग मुलतवी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी की क्यादत चवण से वोटिंग मुलतवी कई वही। अमेरिकी मीडिया मुजिब ठहराव से डेमोक्रेट्स जहा वोट्स मुकमल हुआ जैसे सबब रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुलतवी कराई।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। पर ही तर्जुमान पारां तस्दीक ताहिर हुसैन इंद्राबी चयो आहे त वज़ीर-ए-आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाकातूं कंदो। पाकिस्तान जे विच भर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा 2 अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। कराची में शाहराह भुटो की तमीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी शाम रोड जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह कंदो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुटो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो आहे। शाहराह भुटो कराची जी मुआशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 39 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपयनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी ऐं मज़हबी जमातुनि जा महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। जेवीआई पारां महांगाई ऐं बदमनी ख़िलाफ़ सखर कंबर नवाब शाह मीरपुर माथेलो ऐं सांगण में एहतजाज कयो वियो। जमात इस्लामी जे सॾ ते कोटड़ी कंधकोट तलहार ऐं जेकबाबाद में मुज़ाहिरा नौशहरो फिरोज़ उमरकोट ऐं सेवण में एसयूपी एहतजाज कयो। मटियारी में क़ौमी अवामी तहरीक पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: सुनिए

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Mera naam Dr. Sadullah Chachad hai. Main consultant pediatrician hoon. NICH कराची में पोलियो के खिलाफ 13 अप्रैल से एक मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: सिया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

पाकिस्तान अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी छिकतान जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। घर वज़ीर मोहसिन नकवी ॾींहुं 24 कलाकनि दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकी सां तहरान में ॿी मुलाक़ात। तहरान ऐं वॉशिंगटन में इम्कानी मुआदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियनि मूजिबि पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी सालसीअ में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तसदीक करे छॾी। अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वॉशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआदे जे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बरुदारे मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं मुआदे खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिबि अमेरिका सां अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। आबद हरमूस ते ईरान तोन लगायो त तहरान ऐं वॉशिंगटन में सफारती मुआदो न थींदो। दुनिया में केर बि आबद हरमूस ते टोल जे हक में नाहे, इन खे क़बूले नथो सघजे। अमेरिकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मस्बत इशारा मिलिया आहिनि, वधीक पुरउमीद न आहियां। ईंदड़ कुझु ॾींहनि में शयूं वाज़े थी वेंदियूं। अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबति सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ ते वोटिंग मुल्तवी। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी जी क़यादत जे चवण ते वोटिंग मुल्तवी कई वई। अमेरिकी मीडिया मूजिबि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जा वोट्स मुकमल हुआ, जंहिं सबबि रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुल्तवी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। बरही तर्जुमान पारां तसदीक ताज़ हुसैन इंदिरावी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विचोभर में छिकतान जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा ॿ अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहिनि।

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अज शाम रोड जो बाजाबा इफ्तिताह कंदो। वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनदी जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो। शाहराह भुट्टो कराचीअ जी मुआशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 49 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपियनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो। सिंध पुलिस सूबे में अमन क़ाइम करण में नाकाम, तकरारनि ते बि गुंजो न आयो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत 7 ॼणा क़तल, 1 ॼणे जो तशद थियल लाश थे। बख्शापुर भरिसां भंगवार बिरादरी जी बिंदुरनि में झेड़ो, औरत समेत 3 ॼणा क़तल। ॻोठ सखवान जाफरीअ में थियल झेड़े में मेहार भंगवार, ग़ुलाम फरीद ऐं औरत आलिम उमर जी वई। पलांद में 1 औरत समेत 3 ॼणनि खे क़तल कयो वियो। कश्मोर भरिसां बि कचे में कोश ऐं शरधुरनि में झेड़ो, बदनाम धाड़ियल भूरो शर ऐं नूर मोहम्मद कोश समेत 3 ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धाड़ेलनि जे सिरे ते 50 लख रुपया इनाम बि रखियल हो। मारिजी वियलनि में मारूफ शर बि शामिल। गबर भरिसां बि पोइ सईद भट्टी डंडा हणी क़तल। न्यू सईदाबाद भरिसां नौजवान अब्दुल लतीफ जमाली जो घर मां तशद थियल लाश थ। पुलिस 3 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मुजिबि वाकिए में मुलविज़ उमीद अली रांझण ऐं अलीगुल जमाली खे गिरफ़्तार कयो आहे।

0: सिंध के मुख्तलिफ़ शहरनि में सियासी ऐं मज़हबी जमातुनि जा महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा जे वाई पारां महांगाई ऐं बदमनी ख़िलाफ़ सखर कंबर लारकाणो हैदराबाद नवाबशाह मीरपुर माथेलो ऐं सांगर में एहतजाज जमात इस्लाम जे सॾ ते कोठड़ी कंधकोट तलहार ऐं जैकबाबाद में मुज़ाहिरा नौशहरो फिरोज उमरकोट ऐं सेवण में एसयूपी एहतजाज कयो हैदराबाद ऐं मटियारी में क़ौमी अवामी तहरीक पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो घुड़की भरिसां मुबैना तौर अगवाबाद इज्तिमाही लजालत जो निशानो बणियल नारीअ जे गोराहारी हुअण जी तस्दीक थी वई निजी अस्पताल जी लेबोरेटरी जे नारीअ जे गोराहारी हुअण जी तस्दीक थी कुझ ॾींहं पहिरीं आदिलपुर वासी नारी बासरनि ते इज्तिमाही लजालत करण जो इल्ज़ाम लॻायो हो नवाबशाह जी अदालत जो खुलियल गटर में किरी फोत थियल मासूम बाड़ीअ जो केस दाख़िल करण जो हुकुम अदालत बाड़ीअ जो केस ओल्ड टाउन जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ॿियनि ख़िलाफ़ दाख़िल करण जो हुकुम ॾिनो पुलिस खे वाक़े जी जांच करे कानूनी कार्रवाई यकीनी बणाइण जी हिदायत छह मई ते निंगरी गटर में किरी फोत थी हुई
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके
4: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GAFM 88 नेटवर्क GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: मुझे जान

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ. अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा. औलाद के निगहबान वालिदैन हैं. पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा.
3: अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़. अ प्रोडक्ट

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सुन।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This anchek is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: ईरानी ख़बरूं इदारे मूजिबि तहरान ऐं वाशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं माहिदे खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिबि अमेरिका सां अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। आबनाए हरमूज़ ते ईरान टोल लगायो त तहरान ऐं वाशिंगटन में सिफारती मुआदो न थींदो। दुनिया में केर बि आबनाए हरमूज़ ते टोल जे हक़ में नाहे, इन खे क़बूले नथो सघे। अमेरिकी परे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मस्बत इशारा मिलिया आहिनि। वधीक पुरउमीद न आहियां, ईंदड़ कुझु ॾींहनि में शयूं वाज़े थी वेंदियूं।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो, पर ही तर्जमान ताहिर हुसैन इंद्रावी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चुयांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विचोभर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा बि अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबति ठहराउ समेत मुख़्तलिफ़ बिल्स जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ऐं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जी रेगुलेशन वारो बिल ऐं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी बिल मंज़ूर कया विया। सिंध असेंबली जिना अस्पताल ऐं NICH रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल जी बि मंज़ूरी ॾिनी। सीनियर सूबे वज़ीर सरजी जिना मेमन चयो त पाक चीन दोस्ती समुंड खां ऊंधी, हिमालय खां ऊची ऐं माखीअ खां वधीक मिठी आहे। पाकिस्तान ऐं चीन जी दोस्तीअ खे 75 साल मुकमल थिया आहिनि। कराची रस्ते वॾे पैमाने ते चीन सां वापार थी रहियो आहे।

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु शाम रोड जो बाज़ाब्ता इफ़्तिताह कंदो। वरी वज़ीर बरादरी शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो। शाहराह भुट्टो कराचीअ जी मुआशी तरक़ी, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 49 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपियनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो।

सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करण में नाकाम, तकरारन ते बि गुंजोड़ आयो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत सत ॼणा क़तल, हिकु ॼणे जो तशद थियल लाश थियो। बख्शाबर भरिसां भंगवार बिरादरी जी विंधुनि में झेड़ो, औरत समेत टे ॼणा क़तल। ॻोठ सुफ़ान जाफरीअ में थियल झेड़े में मेहार भंगवार, ग़ुलाम फरीद ऐं औरत आलिम मारिजी वई। पलांद में हिकु औरत समेत टिन ॼणनि खे क़तल कयो वियो। कश्मोर भरिसां बि कच्छ में कोश ऐं शरधुरनि में झेड़ो, बदनाम धारियल भूरो शहर ऐं नूर मोहम्मद कोश समेत टे ॼणा मारिजी विया। ॿिन्ही धारियलनि जे सिर ते 50 लख रुपया इनाम बि रखियल हो। मारिजी वियलनि में मारूफ़ शर बि शामिल। गबर भरिसां पर सईद भट्टीअ खे डंडा हणी क़तल कयो वियो। न्यू सईदाबाद भरिसां नौजवान अब्दुल लतीफ़ जमाली जो घर मां तशद थियल लाश हथायो। पुलिस टिन ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि वाके में मुलविज़ उमेद अली, रांझण ऐं अलीगुल जमाली खे गिरफ़्तार कयो आहे।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी ऐं मज़हबी जमातुनि जा महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। जेयूआई पारां महांगाई ऐं बदमनी ख़िलाफ़ सखर, कंबर, लाड़काणो, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर माथेलो ऐं सांगर में एहतजाज। जमात इस्लामी जे सद ते कोटड़ी, कंधकोट, तलहार ऐं जकमाबाद में मुज़ाहिरा। नौशहरो फिरोज, उमरकोट ऐं सेवण में एसयूपी एहतजाज कयो। हैदराबाद ऐं मटियारीअ में क़ौमी अवामी तहरीक पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिनकेट जी मुख़्तलिफ़ केसिस जी सेंट्रल जेल कराची में क़ाइम अदालत में ॿुधणी। अदालत पुलिस जी रिमांड वारी सज़ा रद्द करे छॾी। अनमोल उर्फ पिनकेट खे अदालती रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। जांच आफिसर्स खे ईंदड़ ॿुधणी ते केसिस जा चालान पेश करण जो हुकुम।

जेको आवाज भरिसां गोट सिद्धी कराई में पसंद पर नेता घरनि खे बाहि ॾियण वारे केस जी सिंधा कोर्ट लाड़काणो बेंच में ॿुधणी अदालत अॻवा ॼाण आयल ॿिन्ही नींगरनि खे 2 जून ते पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। SSP जेको बाद खे बि ईंदड़ ॿुधणी ते ज़ाती हैसियत में पेश थियण जी हिदायत।

वखो में पसंदी शादी कंदड़ नौजवान जे बिन भाइरनि जे कतल जो केस दाखिल। मकतूलनि जे नंढे भाउ आकिल मेओ जी फरियाद ते सत ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। केस में महरम मुखेरी, शाहनवाज, ज़ाहिद, दरिया ऐं टे अणॼातल जवाबदार नामज़द। पुलिस जी रिवायती सुस्ती बरक़रार, कातिल गिरफ़्तार करण में नाकाम।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात
1: चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: ये yeah!

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 पोलियो की मुहिम आने वाली है। इसमें मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: देख रहे हो तुम कम बैंक क्लबीप के कैन करोगे तो हर रेमिटेंस पर शांति का मौका पाओगे, जैसे के साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक क्लबीप के 1320 से ज्यादा ब्रोकर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचे। रेमिटेंस 25 मई के दरमियान बैंक क्लबीप से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ। तो भाई साहब क्या समझे,
3: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: डोनेशन करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: पाकिस्तान अमेरिका ऐं ईरान विच में जारी छिकतान जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी 24 कलाकनि दौरान ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास इराक़ी सां तहरान में ॿी मुलाकात। तहरान ऐं वाशिंगटन में इम्कानी माहिदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे। ईरान पाकिस्तान जी सालसीअ में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तस्दीक करे छॾी। अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओ जवाब वाशिंगटन खे मोकिले छॾियो। माहिदे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बर इदारे मूजिब तहरान ऐं वाशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं माहिदे खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदारनि मूजिब अमेरिका सां अञा ताईं माहिदो तइ नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे।

आबनाए हरमुज से ईरान टोल लगाया तो जिनमें सफारती मुआदो न थी दो। दुनिया में केर भी आबनाए हरमुज से टोल के हक में ना है इनके कबूले न थो सकते। अमेरिकी परदेह वजीर मार्को रूबियो चवे तेहरान से गाल में कुछ मस्बत इशारा मिलिया पुरउमीद ना आया इंद कुछ दिन में शय वाजे थी वेंदू। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुबह बीजिंग रवाना थन्द पर तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिरा भी है तो वजीर आजम सुबह का 26 मई तीन चीन में मौजूद हों। सरदार शी जिनपिंग वजीर आजम ली चुआंग बेन से मुलाकातू कौ पाकिस्तान जो विचो भर में छिकता के खात्मे लिए कोशिशू जारी हैं। घर वजीर मोहसिन नकवी तेहरान जहा ब अहम दौरा कया नायब वजीर आजम इसाकदार भी आलमी अगवान से राबते में है फील्ड मार्शल के तेहरान के दौरे बाबत तस्दीक या तरदीद न कदस। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबत सहारा समेत मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी दी छी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड्स बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज ए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के रेगुलेशन वालों बिल ए सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरमीमी बिल मंजूर कया वा। सिंध असेंबली जिना एनआईसीएच रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल की मंजूरी भी डी। सीनियर वजीर सहजरी नाम अहमद चाहे तो पाक चीन दोस्ती समुद का उन्हीं हिमालया का ऊंची ए माखी का मिठी है। पाकिस्तान ए चीन की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल थे। कराची रस्ते बड़े पैमाने पर चीन से व्यापार थी रो है।

0: जेको फरसा कोट सिधी काराई में पसंद पड़े तां घर के बाहर वाले केस डी सिंधा कोर्ट लाड़काणो बेंच में बुधनी अदालत अगवा जानल बिन निंगरन के 2 जून ते पेश करण जो हुकुम दे छियो। एसएसपी जेको बात के बिंदर बुधनी ते
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीद के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार

0: ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे,
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
2: मानस हो सारी टेंशन्स जब हो आपके पास Zong 4G की प्लस ऑफर। Let's get digital with Zong 4G।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: क्या देख रहे हो?
1: बाहर से रकम,
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक शानदार, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
3: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में
5: हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
6: तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू तू यार नहीं का चीज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 5 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे तो सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो आहे। शाहराह भुट्टो कराची जी मुआशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जी नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिल आहे। शहर जी तरक्की असांजी पहिरीं तरजीह आहे। हसन नकवीअ जी 24 कलाकनि दौरान ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ सां तहरान में बि अहम मुलाक़ात। तहरान ऐं वाशिंगटन में इम्कानी मुआते वारनि तजवीज़ुनि ते बि ॻाल्हियूं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स मूजिब ॿिन्ही अॻवाननि अमरीकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो। ईरान पाकिस्तान जी टियाखिड़ीअ में अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तस्दीक करे छॾी। अमरीकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वाशिंगटन खे मोकिले छॾियो। मुआहिदे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क बि तयार करण जूं कोशिशूं तेज़। ईरानी ख़बरू इदारे मूजिब तहरान ऐं वाशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई धुरियूं मुआहिदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि। ईरानी अमलदार मूजिब अमरीका सां अञा ताईं मुआहिदो तय नाहे थियो। इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूर थी आहे। आबनाए हुरमस ते ईरान टोल लॻायो त तहरान ऐं वाशिंगटन में सफ़ारती मुआहिदो न थींदो। दुनिया में केर बि आबनाए हुरमस ते टोल जी हक़ में नाहे। वज़ीर मार्को रोबियो चयो आहे त तहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मुस्बत इशारा मिलिया आहिनि। वधीक पुरोमेद न आहियां। ईंदड़ शयूं वधीक वाज़े थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे थींदो। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा बि चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां अहम मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विचो ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तहरान जा 2 अहम दौरा कया आहिनि। आज़म मिसाकदार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। फील्ड मार्शल जी तहरान जे दौरे बाबति तस्दीक या तरदीद न कंदसि। सिंध असेंबली पाक चीन दोस्ती बाबति ठहराउ समेत मुख़्तलिफ़ बिलनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड्स बिल, सिंध मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन काउंसिल बिल, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियुनि ऐं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जी रेगुलेशन वारो बिल ऐं सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तरमीमी

0: भी मंजूर। सिंध असेंबली जना अस्पताल एनआईसीएच रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट बिल की भी मंजूरी दे छी। सीनियर वजीर शर्जील मेहमद चयो तो पाक चीन दोस्ती समुंड का उन्हीं हिमालय खाखी का वधिक मिठी है। पाकिस्तान चीन की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल थिया। कराची रस्ते वडे पैमाने ते चीन से व्यापार थी रो है। सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करण में नाकाम। तकरारों से भी बुझो न आयो। मुख्तलिफ शहर में औरत समेत 7 जना कतल। एक जने जो तशद थियल लाश हथ। बख्शापुर वेझो बंगवार बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो। औरत समेत 3 जना कतल थी वया। गोठ सखवान जाफरी में थियल झेड़े में मेहार बंगवार गुलाम फरीद औरत आलमू मारजी वही। पलांद में एक औरत समेत कतल कयो वयो। कश्मीर बेजोश शहर धुरन में झेड़ो। बदनाम धाड़ेल भूरे शहर नूर मोहम्मद कोश समेत 3 जना मारजी वया। बिन्हीं धाड़ेलन की सिर ते 50 लख रुपया इनाम भी रखल हो। मारजी वेलन में मारूफ शहर भी शामिल। गंबट वेझो भी पोरत सईद भट्टी डंडा हणी कतल। न्यू सईदाबाद वेझो नौजवान अब्दुल लतीफ जमाली जो घर में तशद थियल लाश मिलो। पुलिस टिनार करे वरतो। पुलिस मूजिब वाक़े में मुलविस उमेद अली रांझन अली गुल जमालिया के गिरफ्तार किया वो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरखास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए। कतरे उनकी इम्यूनिटी।
4: सिंध की हो तो आवाज, सिंध की आवाज।
5: क्या देख रहे हैं? सब तत्व पर भी जीत सकते हो। हर से भेजे गए रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
6: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
8: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
7: GAFM नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: It's 5:15 PM.
3: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyajosho. A product by Biocon International Pakistan.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: वाली आ रही है जनाब, लेकिन कोई गल नहीं, थोड़ी सी हवा भी चल रही है और गर्मी को जितना फील करेंगे उतना ज्यादा ही फील होती हो रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आप इतना ज्यादा गर्मी को फील ना करें, आप ट्यून करें GFM 88 नेटवर्क और जनाब मेरे साथ आ जाएं 5 से 7 बजे तक तो कन्फर्म है आपको गर्मी नहीं लगने वाली, क्योंकि जनाब हम आपको सुनवाएंगे बहुत जबरदस्त से गाने, करेंगे आपके साथ बहुत सारी जबरदस्त चिट चैट और जनाब आपके मैसेज भी शामिल शो करेंगे जो कि आप बड़े प्यार के साथ हमें भेजते हैं जनाब। और यू होगी हमारी 2 घंटे की लंबी लॉन्ग ड्राइव बजरिया GFM 88 नेटवर्क के प्रोग्राम आई लव यू ऑल में। खैर जनाब आप हमारे साथ मौजूद हैं और यूं ही एंजॉय करेंगे। हमारी लाइव फीड पे जो है वो भी आ रही है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जनाब जो हमके मैसेज हमें मैसेज कर रहे हैं। आगा जब्बार साहब है, कहते हैं एक्सीलेंट जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज, आगा जब्बार साहब कहते हैं और मैं भी उनको ये कहता हूँ। इसके बाद जनाब फराज अली कहते हैं आई लव यू सर, थैंक यू सो मच फराज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फराज, फराज अली गांगरो। और जनाब इसके बाद नजीर खोसो हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, ये भी हमारे साथ हैं। और जनाब आगा जवाहर साहब कहते हैं आपने बकरा लिया, अरे जनाब मैंने बकरा भी नहीं लिया क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी सैलरी वैली स्टार्ट हुई 11 महीने हो गया जनाब, हम गरीब लोग कहां से बकरे लेंगे, हमने तो ईद के कपड़े तक नहीं लिए सर, अब रुलाएगा क्या, बस कर पगले। और जनाब अशफाक आपके साथ मौजूद है, बकरा ईद का सीजन है और बकरा ईद का सीजन है तो जनाब मंडी वंडी सज गई है जनाब, कुछ ही दिन बकरा ईद में रह गए हैं और सभी लोग ताबड़तोड़ मंडियों का रुख कर रहे हैं, रोडों पे खड़े हुए बकरे लेकर, गाय लेकर, दुम्बे लेकर और जनाब ईद की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी है, बाजार भरे हुए हैं जनाब और लोग जो है ईद की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान की रौनकें, पूरी दुनिया की रौनकें इसी तरह बरकरार रखे कि हम चाहते हैं जनाब ये रौनकें लगी रहे, ये रौनक मिले जो वो कम ना हो और लोग इसी तरीके से ना अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय करते रहें। नजीर खोसो हमारे साथ मौजूद हैं और सर आप ये बताइए आगा जब्बार साहब कि आपने बकरा बकरा लिया कि नहीं लिया और जनाब ईद की तैयारियां कहां तक पहुंची आपकी, सब लोग हमें बताएं। वजाहत अली हमें देख रहे हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारे साथ रही इम्तियाज अली लशारी हमारे साथ हैं, वजाहत अली कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम मौला अली मदद, या अली मदद और मौला अली मदद कैसे हैं सर जी, आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन। फकीर मोहम्मद यूनुस जो ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम सलाम जनाब। आज जाहिद शाह कहते हैं कैसे हो सर, आरजे भाई कैसे होता है एक आरजे, हमेशा जबरदस्त, हमेशा फुल ऑफ फन और हमेशा जिंदगी से भरपूर, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं जैसे आप हैं, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो जनाब हमारे पास कॉलों की भरमार आना शुरू हो चुकी है, लोग बोलते हैं कॉल नहीं लेते जनाब, मैं चाहता हूं कि आपकी कॉल में भरपूर तरीके से लेता रहूं और जनाब इसी तरह से जो है आपकी साथ चलता रहूं और मैं चाहता हूं कि बस आप लोग हमेशा खुश रहें, चाहे आप कॉल के थ्रू लें रहें, आपकी कॉल अटेंड करूं, चाहे आपके मैसेज पढ़ के मैं पढ़ूं तो आप खुश रहें, तो जनाब हमेशा खुश रहा करें क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, खुश रहने का नाम है, क्योंकि परेशान अगर हम होंगे तो इससे हमारी कल की जो मुश्किलें वो दूर थोड़ी ना हो जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पुरसकून रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। शफीक भट्टी हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अब्बास मंगी साहब हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं कहीं बैठे हुए और जनाब जा रहे हैं, हमेशा खुश हैं। शफीक भट्टी कहते हैं हम फ्रॉम सऊदीया, क्या बात है, अब सऊदीया से है, तो जनाब सऊदीया वालों को हमारा ढेर सारा सलाम और जनाब अपनी जिंदगी की रौनकों को आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, जिंदगी को भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, तो हमारे साथ रहिए इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। और जनाब जिस जिसके पास भी स्टार्स है ना, आजकल फेसबुक के बड़े स्टार्स चल रहे हैं, तो जिस जिसके पास भी स्टार है तो वो मुझे देता रहे और जनाब इस जो मेरी फीड चल रही है इसको बहुत ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें जनाब कि मेरा फेसबुक मोनेटाइज हो जाए देखें जनाब अपने काम भी करवाते रहते हैं बंदा। तो जनाब क्यों ना लेते हैं शो की पहली कॉल और देखते लाइन पे कौन है, ज्यादा देर नहीं करवाते आपको। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
2: खालिक लाशारी गलाएं तो।
1: अच्छा खालिक लाशारी साहब, केड़ा हाल चाल है तां जा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिठड़ा बा, तमा बुधायो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मां भी फर्स्ट क्लास आया। और इयो बुधायो खालिक लाशारी साहब, त ईद जी तैयारियों की थी हलन तां जी?
2: हां बिल्कुल, VIP नमूने सा बकरा खरीद के आ कपन जा जुरा जुतियों तो माशाल्लाह, जेड़ो हाल है मना भी ईद की VIP तैयारी
1: की, जबरदस्त या तां बकरो भी खरीद के चुको आयो, कपड़ा भी, लट्टा भी, जूता भी, बस ऐसा ही बैठा हुआ जाता है, दिसो ना हालत
2: बकरो वी
1: वाह, घने जो तुम बकरो वो आप
2: 25,000 में?
1: माशाल्लाह यार, माशाल्लाह 25,000 में बकरा लिया खालिक लाशारी भाई ने, यार ये बहुत अच्छी बात है, तो घने उनमें घणो गोश्त निकरंदो माना?
2: अरे ना गोश्त ॾिसो न तोरियो कोन्हे, अंदाज़े सां जेतिरो वज़न हूंदो, माशाल्लाह ठीकु ठाक वज़न सुठो ई आहे,
1: गुड गुड गुड, माशाल्लाह तेज़ निकिता हो, माना तमामु

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। जिते मेला नसीब बन जा, जिते मेला नसीब बन जा। बिल्कुल जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका अपना GFM88 नेटवर्क है और अशफाक नियाज़ी आपके साथ है। शाम के 7 बजे तक लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। सभी सा गड
1: इशफाक
0: भाई। अस्सलाम वालेकुम। सभी सा गड
1: साईं कतकोड़ मां सूफी माजली मलिक
0: तकड़ो माची तकड़ो माची आयो ठीक ठाक। अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो खैर सां आयो। किथां कॉल कई आहे तव्हां? किथां, कहिड़े शहर मां? कंदकोट मां। कंदकोट पर सभु कीअं आहिनि?
1: सभु मस्त।
0: सभु मस्त? एॾा मस्त बि न थियो
1: जीअं असां मस्त हूंदा। ॾिसंदा
0: अच्छा, छा कंदा आहियो दादा? नालो ॿुधायो वरी ॿीहर मूंखे। एग्जैक्टली माजिद अली मलिक साहब, तव्हां हाणे मूंखे तव्हांजी फरमाइश पूरी कई न मां फेसबुक ते।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल लख
0: न कोई मसलो न आहे। माजिद मलिक साहब, इहो ॿुधायो कम कार तव्हांजा कीअं था हलनि?
1: सवा ज़बरदस्त साहिब, अलाह जी महिरबानी सां।
0: अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो तव्हांखे असांजो शो कीअं पियो लॻे?
1: माशाला ज़बरदस्त, मुंहिंजी फरमाइश तव्हां पूरी कई आहे। सफ़ा मस्त था
0: छॾे भाउरनि जी दुआऊं, भाउरनि जी दुआऊं, भाउ भाउरनि जी फरमाइश रखनि ते।
1: अलाह कुझु कंदो, रब पाक आबाद कंदो।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाणे फौजिया सुबुह था हलायूं छो त हिकु अधो फरमाइश करे थो बिल्कुल ख़ासि खां। उहा कंहिंजे नाले था करणु चाहियो, कहिड़ो डेडिकेट करणु चाहियो था?
1: मोहम्मद ख़ान मलिक।
0: मोहम्मद ख़ान मलिक ओनली?
1: ओनली।
0: क्या बात है यार, क्या बात है। इहो चाहियो
1: मुंहिंजो मामू आहे।
0: मामू, मामे खे बि डेडिकेट कयो था? वाह वाह वाह,
1: प्यारो आहे मूंखे।
0: प्यारु, वाह वाह, मामा त प्यारा हूंदा आहिनि न?
1: या मामू आहे, मामी कयो।
0: अच्छा, मामू वरी मामी खे प्यारो आहे? तव्हांखे मामो प्यारो आहे, वरी मामो वरी मामी खे प्यारो आहे?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: इन्हनि
0: ॿिन्हिनि खे डेडिकेट था कयो। तव्हांजा मामा ऐं मामी हमेशा सुखी रहनि, ख़ुशि रहनि, खिलंदा मुस्कराईंदा रहनि। तव्हां बि खिलंदा मुस्कराईंदा रहो। थैंक यू अदा माजिद मलिक साहब। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारे साथ थे माजिद मलिक साहब और इनका फरमाइशी गाना हमने प्ले कर चुके हैं, लेकिन हम फौजिया सुमरों का गाना प्ले करेंगे अब्दुल रज़ाक की फरमाइश पर। शाहरुख खान बुर्रो हमारे साथ हैं, कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब भाई हमारे साथ हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं सखर से, कंदकोट से या फिर डेहरगी से, जहां से भी देख रहे हैं। याकूब भाई कहते हैं हाई हाई टू यू टू। और अब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام محترم جناب، کیڑو حال ہے؟ خیر سے ہوں سر
0: الحمدللہ۔ کیر اسا سبنی سان گڈ
2: سر؟ محمد دین کاندرو وغیرہ تاجی اللہ وسلم صاحب سے سر میر واخا۔
0: محمد دین کاندرو تھڑی میر واخا، کیڑا حال چال ہے محمد دین کاندرو صاحب؟
2: الحمدللہ مہربانی اللہ جی، تمام خوش ہے؟ تب ٹھیک ٹھاک ہے۔ مجھے دوست ہیں درشا دل کاندرو، کلا قاسم علی کاندرو۔
0: جی جی،
2: میں تو دن پہ تمام پسند کر پٹوندا پنگوڑا نائس ہے۔
0: ہاں ہاں۔

0: तव्हां कीअं आहियो बाबा?
1: अलहमदुल्ला, मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां। तव्हां कहिड़ो कमु कार था कयो अदा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त साईं, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो ऐं खोड़ सारो एंजॉय कयो। अच्छा, गुड यार, गुड, ज़बरदस्त। तव्हांजी आवाज़ में थोरी डिस्टर्बेंस थी अचे, कट कट कट कट कट करे थी अचे आवाज़। हा, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा, हमेशा ख़ुशि रहो ऐं खिलंदा मुस्कुरांदा रहो हमेशा। और जनाब, अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और जनाब, हम आपके साथ हैं रात के शाम के 7 बजे तक।
2: अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम
1: केर असां सभिनी सां गॾु आहे।
2: शामीर अली चाचड़ पन वाकि लॻा ॻाल्हायां पियो।
1: शामीर भाउ, कहिड़ा हाल चाल अथव?
2: अलहमदिल्ला, अल पाक जे एहसान मालिक जी महिरबानी लॻी पई। तव्हां पंहिंजो हाल ॿुधायो साईं, तव्हां ख़ुशि लॻा ॾियो ॾाढा मज़न में।
1: अलहमदिल्ला, तव्हां भाउरनि जी असां सभिनी सां गॾु दुआऊं आहिनि, तव्हां हमेशा ख़ुशि रहो। इहो ॿुधायो त गानो ॿुधायो फौजिया सूबरो जो, कंहिंजे नाले थकणु चाहियो?
2: बसि मुंहिंजो पीरी प्यारो दोस्त आहे अब्दुल वहीद जतोई साहिब आहे, ऐं आसिफ अली चाचड़ आहे लाड़काणे खां, लुकमान चाचड़ आहे बाबू अदील अबड़ो साहिब आहे।
1: अच्छा,
2: ऐं अब्दुला बंगवारा, जेके पीरी प्यारा दोस्त ॿुधनि पिया, सभिनी खे खोड़ सारा सलाम।
1: वालेकुम सलाम, हमेशा ख़ुशि रहो, असांखे ॿीहर बि ज़रूर कॉल कजो। थैंक यू सो मच अदा,
2: खुदा
1: हाफिज़। हम चलाते हैं जनाब अब्दुल रज़ा की फरमाइश पर बहुत प्यारा सा गाना, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब, फौजिया सुमरो का गाल नथो मुझी बुधी, इस गाने को एंजॉय कीजिए। और रशफाक नियाजी आपके साथ है शाम के 7 बजे तक।

0: सलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
1: मोरो
2: नौशहरो
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। पाकिस्तान में 13 अप्रैल से एक इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मैं यही सुनना चाह रहा था।
1: बिल्कुल जी,
0: तारीफ करो तो मेरी तारीफ होगी ना। अच्छा हाजी रहीम साहब, ये बताओ गाना कौन सा सुनना चाहते हो?
1: हाँ तू वक्त बदली, ये सुनाओ।
0: अच्छा ये है किसका?
1: पता नहीं यार, सम सुना देता है किसका।
0: अच्छा तू अख बदली, ओके मैं देखता हूँ किसका है तो फिर आपको सुनवाता हूँ। अच्छा ये है तू अख बदली, बस किसी का तो है, मैं भी दिला लेता हूँ। किसके नाम करना चाहते हैं?
1: सिर्फ आपके नाम।
0: ओए होए, थैंक यू सो मच हाजी साहब, जीते रहो, खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो।
1: अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ है हाजी रहीम साहब और अभी जानो से, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं चाहे कहीं से भी हैं, आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 हमारा नंबर है। लेते हैं शोकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ?
2: लुबना थी गलाया।
0: लुबना गलायो था, लुबना कितना प्या गलायो सखर माओ?
2: खैरपुर
0: मा, खैरपुर वाली लुबना आई असान सभी सा गुड
2: एडी
0: गर्मी में तो सिग्नल ही जवाब देता वन
2: जी जी मामा मां तुम तो मन को तो अदा जो सदर होते थी
0: अदा तो सेंट्रो आ कहीं जी को लिखण दो आ
2: मन में ता सदो आती हूं।
0: थैंक यू लुबना। यो बतायो गर्मी में पाजो ख्याल रखो था, कोई थदा थदा जूस पियो था?
2: जी सब पाई समुदा काऊं के दादी सता ते उंदा पका दलन मत हूं गर्मी सा असर ही कोनी।
0: वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त। यो बतायो ईद की तैयारियों काते पोती हूं?
2: असां त ईद जी छुट्टी करे आया हूं।
0: वाह वाह गोडा वडी तेज लगा पियो तहां त
2: जी। अज असां ईद जी छुट्टी करे आया, साजी वसे मुजी सिस्टर मुजी अम्मी सजा सा विया ते ईद जी छुट्टी करे आया।
0: जबरदस्त लुबना भेण, यो तो बतायो खवातीन जी तैयारियों तो ईद जी रात तक कंप्लीट कोन थिंदी वन, वरी कुछ ना कुछ खुटी पौंदो आनन जो।
2: जी खुटी पर ना असन जो बर्फ गाड़ी ना उना माने के असन को टेम न वेंदो आ रात में ना उठे।
0: हां सही, आई रात जी शॉपिंग सही आ, जो तो थदो टाइम भी हुंदो आ आई गर्मी भी एतरी कोन हुंदी आ। हाँ लुबना भेण, यो बुधायो त जेको आहे तमा कोई उजई ले जानवर खरीद कयो आप?
2: जी जी सकना उजई असा वडो जेको सान न उ असा रखना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त।
2: ना ना यो ना ना बा इंदा कोन बनाऊ गाना।
0: और वेरी केडो वेरी
2: केडो चल को मेरे यार बु दो।
0: अच्छा वेरी केडो गाना बुधा
2: असा गानो बुधरायो की खाना बड़े जो
0: सॉरी
2: सूफा न बड़ो जी जी
0: ओके इन जो केड़ो गानो
2: इन जो गानो पर ता दुखवारो तो काई ता ही रोई पनोगा
0: मरी जा सके। अच्छा इन जो हाने मा गानो गोलिया सूफा न बड़ो जो
2: जी जी।
0: अच्छा कोई गानो याद तमा के कोने?
2: जी जी याद है
0: तो वो बताओ ना
2: गान मुला जो ओ जी।

0: वेरी गुड वेरी गुड। ये तुम्हारे स्टाइल में तमाम घड़ो वणंदो समूह जो जो के शो आई वो तमाम घड़ो हद था ना। वेरी गुड वेरी गुड लुबना। हाँ मैं यो गानों तो प्ले क्या तुम बुधो आई कहीं के कोई मैसेज देना चाहो था पांजी भेनरन के भाईरन के
1: जी सलाम जारा के दा के अनमोल तवसुन के बख्तार के नायाब के सिदरा के सुनेरा के बाबर के सलाम है
0: दुआउन में कोई उडरी मना फिलहाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच
1: जी यो गानो
0: जरूर बिल्कुल हलाया तो बिल्कुल हलाया तो यो गानो थैंक यू अल्लाह हाफिज। हमारे साथ ही जनाब बहुत प्यारी लुबना फ्रॉम खैरपुर और जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113400। बाकी बहुत हो रही है ठंडे ठंडे पानी पिए ठंडे ठंडे मशरूबात पिए और जनाब जूसेस पिए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम केरे सा सबनी सा गड
1: लुबना
0: वरी लुबना आपका नाम राजा है आप तो लड़की है अच्छा राधा राधा राधा ऑन द डांस फ्लोर राधा इज द डांस फ्लोर या ना राधा अच्छा राबिया ओके राबिया राबिया कड़ा हाल चाल है तुम्हारा
1: मां ठीक है दादा।

0: पर
1: मूंखे न ओए होए तव्हां ज़ुल्म थियो आहे त तव्हांखे वठी कोन वई
0: नामी चओ मां वठी ईंदमि
1: अच्छा तव्हां अकेलो वेंदो मां नामी सां गॾु
0: जी जी अमी सां गॾु
1: अच्छा सही आहे त पतो हे तव्हांखे छो न वठी आहियां तव्हां कोई शिकायत कोन कई आहे अच्छा त पोइ त ज़ुल्म कयो तव्हां सां तव्हांखे न वठी वियूं हाणे अच्छा गुड आहे गुड आहे वेरी गुड अच्छा अमी अबू तव्हांखे वधीक प्यार कंदा आहिनि लुबना खे बराबरि वाह वाह गुड वेरी गुड अच्छा त तव्हां इहो
0: ॿुधायो
1: अच्छा लुबना नंढी आहे इन लाइ
0: वॾा
1: सदोरा ॿार आहियो अच्छा इहो ॿुधायो मां हाणे जेको गानो थो ॿुधायां इन जी फरमाइश ते लुबना जी फरमाइश ते कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो
0: इहो तव्हांजे नाले कंदासीं ऐं रफ़ीक जटोई जे नाले ते बि इहो सॉन्ग कंदासीं
1: ओके ओके बिल्कुलु
0: ऐं जिते जिते राजा जो आवाज़ वञे थो सभिनि खे सलाम जाम तव्हांखे तव्हांजी पूरी टीम खे ऐं बाबर खे
1: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू राबिया पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो टाइम चेक जो टाइम थियण वारो आहे त तव्हां असां सभिनी सां गॾु रहो ऐं इंजॉय कयो
2: It's 6:15 p.m.
3: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
1: जी जनाब अब हम चलाते हैं एक जबरदस्त सा गाना लेकिन एक और कॉल ले लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम केरदा सा सबनी सा गद
4: शिकारपुर का अच्छा जमालदीन भयो
1: जमालदीन भयो साहब कहिड़ा हाल चाल आहिनि ठीक ठाक आहियो
4: अलहमदुला शुक्र
1: फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास मज़े में इहो ॿुधायो कीअं हले थी गर्मा गर्मी
4: गर्मा गर्मी काफ़ी गर्मी सर्दी में
1: बिल्कुलु बिल्कुलु इहो ॿुधायो ईद जी तयारियूं किथे पहुतियूं
4: ईद जी तयारियूं माशाला कश्मीर में मुकमल आहिनि
1: माशाला माशाला त उज़ई लाइ छा वरितो अथव हा जबरदस्त जबरदस्त इहो ॿुधायो हाणे मां गानो थो प्ले कयां जहिड़ो रंग भूरो सूफ़न अली अबड़ो जो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो इनशाला इनशाला जमालदीन भाई साहब ज़रूर ॿुधाईंदासीं थैंक यू सो मच तव्हांजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अल्लाह हाफिज़ जी जो हमारे साथ थे जमालदीन भयो साहब उससे पहले रुबीना और सॉरी लुबना और राबिया थे हमारे साथ आपको सुनवाते हैं जबरदस्त गाना लेकिन एक और कॉल लेकर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो ओके जनाब ये भाई बात नहीं करें लेकिन आप गाना सुने और एंजॉय करें

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन। जेको रंग भूरो, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। और अब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं, बहुत प्यारे से दोस्त हैं, नजीर धारे जो हमारे साथ हैं, वहीद भयो, वाजिद भयो और शमन अली भयो हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है नजीर धारे जो, वहीद भयो, वाजिद भयो और शमन अली भयो। और लेते हैं शोकी एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आदा।
0: हां जी, केरा सा सबनी सा गड
1: पांजो पुराणो खादम साईं ता दिन पुजारांग पांजो प्रोग्राम शामिल थे आयो।
0: हां बिल्कुल जना, मुखे ता जी जको आहे
1: कुर्बान अली खासकरी बोल आया, खुदा जी गुलाम खासकरी लगी झंडो मरी करा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, झंडो मरी कहां कुर्बान खासकरी साहब, केड़ा हालचाल तन, ठीक ठाक आयो?
1: दुआओं दुआओं वाला या ऐसा क्या विषय हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, ता बुधायो
1: दुआ लगी भाई अजी सरबत सिंधियो को अमर आवाज हुजे, विछोड़न जो सताल को कलाम हुजे, दुआवा करे जदियो असन जी डेडिकेशन आ खास काम दादारी जी का गुलाम रसूल मरी अजी सोलंगी का जितके समातो बदल जो इते जिते असन जो मुसाफिर आवाज शाम जी ने विलायत तपन पंद पर तपन भलीकार है खुशा हुजे।
0: वालेकुम अस्सलाम है भलीकार, थैंक यू सो मच अदा, पांजो खास ख्याल रखजो कुर्बान खास करी साहब, थैंक यू। हमारे साथ जनाब कुर्बान खास खेली साहब की एक और कहते हैं, हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सा सबनी सा गद
2: रफीक जतोई।
0: रफीक जतोई, वेलकम टू आर शो रफीक, छा हाल है, केड़ा हाल चाल है ताजा?
2: ताला जी बलायो माता
0: जमी।
2: हाँ
0: अच्छा, गुडा गुडा, वेरी गुडा। यो बुधायो था गर्मा गर्मी की थी हले, आई ईद जी तैयारियों काथे पहुंची हूं, आई ढोर ढगा काथे पहुंचा
2: यार, असल में छाए ढोर ढगा नी मंडी सफा साथी लगी भैया।
0: अच्छा
2: हां,
0: तो पर ता जानवर वठी में आयो माने ढोर ढगा खपाइन लाए?
2: हां ना ता मने थोड़ी चना होना फेरा गेरा जानवर नी मंडी खत्म लगी भैया, जेकी चोंदा ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल मार्केट गरीब अंदर रहे मौका तो फुरे वठाऊं, लुटे वठाऊं, खसे वठाऊं, पर
2: भाई
0: मरणो भी आबा।
2: हाँ
0: बुधा
2: चारों एतरो चढ़ी वियो आहे, एतिरो चढ़ी वियो आहे जो हद खां बेहद।
0: अच्छा,
2: पर हिन लाइ कोई कंट्रोल करण जेको आहे ई कोन शइ।
0: हा इहा त आहे, वाकई तव्हांजी शिकायत बजा आहे बिल्कुल।
2: मतलब जेका पाउंडर आहे उहो 4000 जो पाउंडर ॾियनि था, जेका कटी आहे उहा 27 जो था, चोकर 18 जो ॾियनि था, ऐं ॾाढो 42 सफ़ा ॻाल्हि ख़राब थींदी थी वञे।
0: सही ॻाल्हि आहे, अलाह रहम कंदो, अलाह रहम कंदो। इहो ॿुधायो, ईद जा कोई वॻा, कोई जूता, कोई सैंडल?
2: सची चव न?
0: हा सची चओ,
2: कुझु बि कोन वरितो आहे।
0: हा मूं वांगे
2: ईद सादगी सां कंदासीं,
0: ईद सादगी सां कंदासीं बिल्कुल जनाब, पर कंदासीं धमाके सां कंदासीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रफ़ीक, इहो ॿुधायो, सरमत जो गानो थो हलायां, विछोड़ो मारे थो, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
2: यार सरमत त मुंहिंजे दोस्त अदला खे पसंदि आहे, पर तूं हुननि मुंहिंजी फरमाइश न हलाए।
0: वरी कहिड़ी, वरी कहिड़ी, वरी कहिड़ी?
2: हुननि समन जी तव्हां फरमाइश कई हुई
0: कहिड़ी बाबा?
2: मुझे यार जी पारत थी।
0: अच्छा मुझे यार जी पारत थी। अच्छा गाय बुधायो तव्हां मूंखे जरा।
2: मां अहिड़े जाल वेठो आहियां, तकरीबन 12-40-50 माण्हू बीठो आहे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, चवंदा

0: मैंने
1: टमाटर वमाटर उछल था
0: खबर ये दौरान रेट न जाता है करे चले दबरे रहो
1: तरी दुख लगे तो सर
0: अकेले उदाय मा कपड़े जो मस्त ना गलाया तो बारा दुकान सापे बेटा हो दे मानो बेटा
1: चलो चलो कोई गल है कहे नाले करना चाहिए शर्मा जो गानो वरी मा तांगे समन भी बुझा दो इंशाल्लाह
0: शर्मा जो गानो अब्दुल्ला नारे जे नारे करना
1: ओके ओके
0: शर्मा लाला शर्मा दे के
1: ठीक ठीक ठीक हां
0: हां वे शर्मा दे गोटा जो
1: हां वाकई जबरदस्त ठीक है ठीक
0: है यार बदो समन दुकान वाले नहीं आप दो तो सिंधी सॉन्ग गाओ वाले नहीं
1: वरी बुधाओ केड़ो जेको भी बुधाओ
0: यार हथे को जिन तरफ रे मके सोचे सूरत जाए मा दिल जो मरी रहा
1: है इयो केड़ो गानो आ इयो गालाए तो या गानो आयो
0: नहीं इयो बनाई के लिए सब को जाने में
1: अच्छा माने पान तू मैं मास में पांच कैफियत बुधाओ था मके तो गानो हलाए जो मा दिल जो मरी रहा है ओके ओके ओके ओके तेला साई सब वाल तोली बंद दिल जा हमेशा खुश रहो थैंक यू रफीक बस हाँ जी दुआ कई तो लगती या बेड़ो पार थी
0: बस
1: अल्लाह भला हाँ थैंक यू सो मच यार बस झोलियो खड़ू खड़ी हाँ बस हाँ गान तो हलया
0: हेलो बस पहले ख्याल
1: रख दो ओके ओके ओके थैंक यू
0: ओके
1: थैंक यू हमारे साथ है जनाब रफीक जतोई और उससे पहले कुर्बान खास के लिए भाई थे तो अब ये गाना चलाते हैं कुर्बान खास के लिए की फरमाइश पे इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म। ये कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे की
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला।
1: अवां जी स्किन डल और बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो। पेश आहे वाइट एज ब्यू, हां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट और ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दिए अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हमें इज्जत देंगे। तो हमेशा जनाब एक तो पॉजिटिव वाइब्स आप में से आनी चाहिए और जनाब पॉजिटिव बातें आप हमेशा करें, क्योंकि देख मायूसी और नेगेटिव चीजें तो होती है ना, भरी पड़ी है दुनिया में। आप कहीं पर भी जाएं तो आपको नेगेटिव चीजें मिलेंगी, आप कहीं पर भी जाएं तो आपको नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी, लेकिन आपके अंदर से एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव बातें ही आपके अंदर से निकलनी चाहिए, ताकि जनाब आप जो है लोगों के लिए एक जिंदा दिली की मिसाल बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहीम साहब कड़ा हाल चाल आई तीन फरमाइश मन हाल ऐसा क्यों आया पर हिंसा तो हलया कड़ी गाने जी फरमाइश हुई तू अख बदली एग्जैक्टली हां जी ब्याह ठीक ठाक मजे में सॉरी छो तो आदि अची वही एकड़ी लुबना और उन असा के जोर भरियो त मांग मुखे यो गानो बुधायो त इन लाय उन जो गानो
1: ओके ओके ओके सर
0: थैंक यू
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जनाब रहीम भाई और इनकी फरमाइश पूरी नहीं हुई थी तो ये दोबारा से आए हैं, पर हम इनकी फरमाइश अब जरूर पूरी करेंगे। तो अख बदली तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03300113488 पर। अस्सलाम वालेकुम। केर दास सा सबनी सा गड मोहम्मद मुबीन जखरानी कंदकोट का केड़ा हाल चाल है मोहम्मद मुबीन जखरानी साहब
2: खैर अलहमदुलिल्लाह
0: सफा
2: अलहमदुलिल्लाह
0: माशाल्लाह माशाल्लाह यो बुधायो छा कंदायो दा अच्छा वांदा छो बैठायो कोई कम कार मना कोई पढ़ाई चढ़ाई माशाल्लाह माशाल्लाह तो बो कुछ भी न कहो छो तो पढ़ाई जरूरी हूँ दिया पहली पढ़ाई उनके बाद बो कुछ अच्छा
2: ये यार
0: जी जी
2: ये कड़ो बताया सके
0: केड़ो
2: यार जकन जो
0: केड़ो केड़ो
2: हमालोगा
0: निंद ये ना
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: ॾिसो मूंखे थोरी थोरी ईंदो आहे तव्हां बि मूंखे गाए ॿुधायो ज़रा
2: जबरदस्त
0: मूंखे तमामु घणो फेवरेट गानो आहे ख़बर अथव। हा इहो मां गानो प्ले कयां थो पर इन द एंड ऑफ प्रोग्राम ओके प्रोग्राम जे एंड में जी गानो त मिली वियो आहे मूंखे पर हाणे इहो ॿी ॿिए अधे जी फरमाइश आहे न उहा प्ले कंदासीं पहिरीं तव्हांजी फरमाइश ठीकु आहे कंहिंजे नाले था करण चाहियो ओके ओके ओके ओके ओके ठीकु आहे थैंक यू दा थैंक यू सो मच थैंक यू जी जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉल है जखरानी भाई और जखरानी भाई की फरमाइश पे ये गाना जरूर सुनवाऊंगा हम लोग जानी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जानी केर असां सभिनी सां गॾु
3: शर्मा गुलाम शबीर मोमिन खान
0: शबीर भाउ कहिड़ा हाल चाल अथव
3: साईं अलाह
0: अलहमदिल्ला ऐं चक चक चक चक सफ़ा कीअं लॻो पियो
3: आहे जी सर
0: चक सफ़ा ठीकु लॻो पियो
3: आहे
0: ज़बरदस्त छा कंदा आहियो शबीर भाउ
3: हारपो कंदा आहियूं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह कीअं हले थो तव्हांजो हारपो
3: शुक्र आहे
0: माशाल्लाह माशाल्लाह अलाह तव्हांजे कारोबार में अलाह तव्हांजे कम में बरकत ॾे इहो ॿुधायो गानो थो हलायां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
3: सर मुंहिंजो भाउ आहे मोहम्मद जतोई
0: जी जो
3: वाल साहब आहे मोहम्मद जतोई मुंहिंजो दोस्त आहे जनरल जतोई
0: जी जी
3: जतोई बिरादरी
0: ठीक आहे ठीक आहे दा थैंक यू बशीर भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू। हमारे साथ है जना बशीर भाई और बशीर भाई की फरमाइश पर हम गाना चला रहे हैं और सॉरी बशीर भाई की नहीं बल्कि रहीम भाई की फरमाइश पर गाना चला रहे तू अख बदली तेरा

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका अपना शफाक आ चुका है आपके साथ। लव फॉर लंबी चौड़ी कमर्शियल ब्रेक, अब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आय हाय हाय हाय जनाब, कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है, पर हम लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये भी चली गई, ड्रॉप हो गई कॉल। क्या हो रहा है यार, आज लगता है सिग्नल्स बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सा सबनी सा गड
1: नजीदा कॉल किया।
0: नजीर
1: नवीदा नवीदा
0: नजीदा
1: नवीदा
0: नवीद नवीद
1: जी।
0: अच्छा नवीदा, अच्छा हाल है तां जो? ठीक ठाक
1: हाल भले हवा चला
0: फर्स्ट क्लास। अच्छा कंदा है नवीदा? अच्छा तव्हां सिलाई कंदी आयो? अच्छा, ओके ओके ओके। त हाणे ई जो सीज़न आहे त तव्हांजी सिलाई सुठी हलंदी हूंदी?
1: जी जी।
0: अच्छा गुड, तव्हांखे असांजो शो कीअं लॻंदो
1: आहे?
0: अच्छा
1: वो सिकी वी आई पी आई
0: थी
1: जबरदस्त।
0: मूंखे ख़बर आहे, पर मां उहा चवां, इहो हाणे समझ में न पई अचे त तव्हां आयो छा आख़िर, कहिड़ी जिन्स आयो? मूंखे बि लॻे पियो त नवीद नवीदा कीअं थी वई आहे, भला एॾो तरक़ी कयो आहे ज़मानो। हा सही सही सही। कहिड़ो गानो ॿुधण चाहियो था?
1: गानो ॿुधाइजो।
0: अच्छा ओके, कंहिंजे नाले करणु चाहियो? ओके ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे। नवीदा ऐं नवीद तव्हांजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो ऐं ज़बरदस्त तरीक़े सां पार्टिसिपेट कयो असांजे शो में। वठूं था शो जी हाणे नेक्स्ट कॉल ऐं चऊं था पंहिंजे कॉलर खे। असां अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: केर दास सभिनी सां गॾु?
2: सोना खान मस्तोई।
0: सोना खान मस्तोई, कैसे हाल चाल है आपके? ठीक है
2: अलहमदुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए, आपकी और आपकी टीम कैसी
0: है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, मजे में। आप सुनाए क्या हो रहा है? और गाना चला रहा हूँ हमारा लोगा जानी, ये किसके नाम करना चाहेंगे?
2: हाँ बस नाम जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, सबसे पहले अली हसन के नाम करूंगा, उसके बाद में इमरान क्या है, और उसके बाद अब्दुल्लाह बनवा रहे, घोड़ा खान बनवा रहे, और आपकी पूरी टीम है, और आपको ईद मुबारक। और आप बताए, आप ईद वाले दिन कौन से टाइम और किस टाइम आप प्रोग्राम करेंगे? अभी तो तुम्हारी मुलाकात ईद के होगी हमारे साथ।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी, लेकिन अभी शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल पेज पर भी, और प्रोग्राम्स में भी बता दिया जाएगा कि हम कब कब आ रहे हैं आपके साथ।
2: बस इसीलिए हमने कहा आज आपके प्रोग्राम में बात करें, आपसे बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको।
0: जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे बात करके।
2: जी जी,
0: थैंक यू सोना भाई।
2: ठीक है सर, बहुत सारा सलाम आपकी टीम को सर।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, अब हम शो को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और गाना चलाते हैं हम लोगा जानी। इस गाने को सुनिएगा और रशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और ईद पर, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगहबान।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: फायदा विटामिन और एवोकाडो या जिसको आपको देखना निखरा चाहिए उससे मिले निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान
1: और ढेर सारे अपना है यो आपका
2: माथे का

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib. रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
5: पाकिस्तान जो कोशिशों रंग दिखारण लगी। ईरान और अमेरिका विच में मुआहदे के हतमी शिकिल देने लाए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम सरकारी दौरे ते तेहरान रवानो थी वयो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में ईरान के अहम शख्सियतों से मुलाकात कंदो। मुलाकात दौरान ईरान अमेरिका छिकतान के खात्मे लाए थींदड़ मुआहदे के हतमी शिकिल दिनी वेंदी। घरू वजीर मोहसन नकवी पहरियां ही तेहरान में मौजूद। मोहसन नकवी अज बीहर अब्बास राकची ए बेन से मुलाकात क्यू आन। ईरान अमेरिका से मुआहदे लाए हतमी मसवदो तैयार थियण की तस्दीक कर छी। यूरेनियम के जखीरे आबनाए हुरमत वाले मामले ते डेडलॉक बरकरार। परदेही वजीर अब्बास राकची है अमेरिका से गालन में मुस्बत अकभराई थी है। रुगो यूरेनियम के जखीरे आबनाए हुरमत वाले मामले ते डेडलॉक है। मुआहदे जो हतमी मसवदो तैयार कर छो है। रुगो ब नुक्ता रंडक बनल अमेरिका एटमी प्रोग्राम से तकड़ी गाल तेहरान 30 डी लाए एतमाद की बहाली चाहे तो। आबनाए हुरमज में भी महफूज सफर लाए अथॉरिटी कायम कर छी है। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो भी ईरान से मुआहदे लाए पुरोमेंद। स्वीडन में गालंदे मार्को रूबियो है ईरान से गालन में पाकिस्तानी ट्रैकड़ी जो किरदार

0: करे रहियो आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तहरान वियो आहे। फील्ड मार्शल सां मुसलसल राब्ते में आहियूं। तहरान सां मुआदो न थियो त प्लान बी बे मौजूद आहे। मुआदो थियो त आबनाए हुरमस खुली वेंदो।
1: जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए, अमन कायम करने के लिए, तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पर जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जंग के खिलाफ नहीं है।
0: वजीर आजम ऐं फील्ड मार्शल ईरान जंग जी खात्मे लाइ कोशिशुनि में रुधल आहिनि। इसराइल अमरीका जंग जी क़ीमत समूरी दुनिया अदा करे पई। दुआगू आहियां त जंग ख़त्म थिए ऐं अवाम जूं मुआशी मुश्किलातूं घटि थियनि। जंग ख़त्म न थी त हालतूं अञा वधीक ख़राब थींदियूं। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अमन अमान लाइ कम कंदड़ अलाह लाइ कम करे रहिया आहिनि। अहसास आहे त अवाम मुआशी मुश्किलात जो शिकार आहे। अवाम खे हर मुमकिन रिलीफ ॾियण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जूं विच ओभर में छिकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी तहरान जा 2 अहम दौरा कया आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बि आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहे। फील्ड मार्शल जी तहरान जे दौरे बाबति तस्दीक या तरदीद न कंदुसि। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शाहराह भुट्टो जे क़ैदाबाद खां काठोड़ ताईं वारे तामीर थियल नए हिसे जो इफ़्तिताह करे छॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां गॾु शाहराह भुट्टो ते सफ़र कयो ऐं टैक्स बि अदा कयो। बिलावल भुट्टो क़यूमाबाद खां कराची पोर्ट एक्सप्रेस वे जी पीढ़ जो पथर रखियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त केटी बंदर ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत नओं पोर्ट ठाहियो वेंदो। बदीन ऐं ठठे समेत समूरी साहिली इलाइक़नि जी क़िस्मत तब्दील कंदासीं। कराची में सिंध इंटरनेशनल फिनांस सेंटर भी खोलियो वेंदो। सियासी यतीम अजायो वाविला करे रहिया आहिनि। साबित करे छॾियो आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिलीवर करे सघे थी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। बांड सेक्स जो आप
1: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इट्स 10 AM।
2: अपना शहर, अपना घर।